ये ऐसा महामृत है कि जिसने चखा वो निहाल हो गया और दूसरों को निहाल करने वाला बन गया। अंतिम समय सुधर जाए ये खास बात है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाए वैसे वैसे आपकी भूमिका बढ़नी चाहिए अध्यात्म की। आप खिलवाड़ में मत अपने जीवन को नष्ट कीजिए। यावत स्वस्थमिदं कलेवरम यावत च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा दूर है शरीर स्वस्थ है प्रसन्न मुद्रा में आप निश्चय करो मुझे केवल प्रियालाल चाहिए। जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करता है, स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए, तनिक भी संदेह नहीं है। जो अंतिम समय भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो श्री भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए हमें पता नहीं हमारा कब अंतिम समय है, तो एक एक क्षण निरंतर अंतर रहित तैल धारावत भगवन नाम भगवत स्वरूप मंत्र प्रभु की लीला गुणों के चिंतन में व्यतीत करना है। पता नहीं कौन सा क्षण अंत हो। हमारी बाजी हार जाएगी अगर हम अंतर बना लेंगे। यही बड़ी हानि होगी, यही बड़ी विपत्ति होगी, यही सबसे बड़ा चूक होगी जिसकी कई जन्मों में भी हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे। एक क्षण भी अंतर न पड़े। राधा राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हमारी जिभ्या पर नाम चलता रहे। अगर कहीं किसी का शरीर छूट रहा है और भगवत प्रेरणा से कोई भगवत नाम जापक पहुंच जाए, उसको नाम कीर्तन सुना दे, उसको भगवान की चर्चा सुना दे, वहां बैठ करके थोड़ी देर मंत्र जप ले, तो उसका निश्चित कल्याण हो जाता है जो शरीर छोड़ने वाला है। कितनी बड़ी महिमा है। अगर वो जीवन में स्वयं ये कर ले तो जरूरत ही नहीं किसी की, ये जीवन ही इसीलिए मिला है। पर अगर कहीं दुर्भाग्यवश उसने भजन नहीं किया और उसको ऐसा संग मिल जाए, कोई भजन करने वाला अंतिम समय उसके समीप, ये बिना भगवान की हेतु की कृपा के नहीं हो सकता। भगवत पार्षद ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे उनके पास? हेतु की कृपालु श्री हरि उस पर रीझ जाए तो ऐसा संयोग बन सकता है। कोई भगवत चर्चा सुना दे, भगवान नाम कीर्तन सुना दे, या वहां समीप बैठकर उसके पास मंत्र जप कर ले, उस वैष्णव उस भगवत प्रेमी महात्मा के सानिध्य से उस वातावरण में यमराज के दूत प्रवेश नहीं करेंगे, उसका कल्याण हो जाएगा। या अंतकाल में ऐसी कोई भयंकर भयावह स्थिति हो और वो अभी मूर्छा को प्राप्त नहीं हुआ, उसको ये याद आ जाए कि इस समय तो भगवान ही हमें बचा सकते हैं, तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाए। यदि ऐसी याद आ जाए उसको, प्रभु की स्मृति एन केन प्रकारेण भी हो जाए तो उसका परम कल्याण हो जाए। ऐसे किसी जीव का शरीर छूट गया है और उसको कोई भगवत प्रेमी महात्मा देख ले मुर्दे को, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या उसके शरीर के समीप पहुंच करके उसे छू दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या उसकी चिता लगाई जा रही हो उसे देख ले, या उसकी अस्थि राख आदि भी पड़ी हो उसको भी छू दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महापातक युक्तावा, एक कोई जवानी शब्द नहीं, केवल तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। महापुरुष भगवत प्रेमी महात्मा कलेवर

अन्य किसी साधन की तरफ दृष्टि मत डालो। कलिकाल में अन्य कोई साधना सिद्ध हो जाए बड़ा कठिन है। जैसे योग मार्ग है, इसकी नींव है ब्रह्मचर्य। कई कई घंटे आसनों पर सुदृढ़ भाव से बैठ करके चित्त वृत्ति को परमात्म स्वरूप मिला बड़ा कठिन है। आहार, संयम, वातावरण, ये सब यज्ञ आदि के द्वारा भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना, तपस्या आदि के द्वारा बड़ा कठिन है। प्रकृति का थोड़ा भी प्रतिकूल व्यवहार शरीर सहने की क्षमता नहीं रह गई, बहुत ही कमजोर शरीर हो रहे हैं, कैसे आप तपस्या कर सकते हैं? धर्म क्या है इसका परिचय

भगवत चर्चा के बिना जी नहीं सकता, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के बिना नहीं जी सकता। बिछुड़त एक प्राण हरि लेहि, अगर संतों से बिछुड़ना पड़े तो ऐसा कष्ट होना चाहिए मानो हमारे प्राण छूट रहे हैं। ये भगवत कृपा। बिना श्रद्धा के भी संत संग कल्याण कर देता है। कर दिया अजामिल का, अपने पुत्र का नाम नारायण रखना आप जो हो। पुत्र मोह में नारायण पुकारा, भगवान श्री हरि के दिव्य पार्षद उसी क्षण प्रकट होकर के यम पाश से उन्हें मुक्त किया अजामिल को। यम दूतों को, तुम धर्म की वृत्ति को जानते हो, धर्म किसे कहते हैं अधर्म किसे कहते हैं? यहां धर्म का लेश नहीं दिखाई दे रहा, तुम तो निरपराध को दंड दे रहे हो। पूरा प्रसंग आपने सुना, हरि पार्षदों ने भागवत धर्म का निरूपण किया, किसने कोटि कोटि जन्मों का प्रायश्चित कर लिया, पुत्र के ब्याज से ही सही, पर इसने हमारे स्वामी श्री हरि के नारायण नाम का उच्चारण किया। अजामिल के हृदय में आया कि पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, तो इन महान दुर्लभ भगवत पार्षदों के दर्शन, यम पाश से मुक्ति, यदि मुझे कुछ भी समय दे दिया जाए तो मैं पूरे चित्त से नाम को जपूं, नाम मैं हो जाऊं, ऐसा प्रार्थना करना चाहते थे, पर बोलने का अवसर नहीं दिया भगवत पार्षदों ने, अंतर्धान हो गए। यद्यपि मैं इस जन्म में महापापी हूं, फिर भी मेरे ऊपर संतों की कृपा है, यह हेतु की कृपाल संत, अगर उन्होंने मुझे बालक का नाम नारायण रखने को न कहते तो हमारा आज सौभाग्य न होता। कहां मैं कुलटागामी अपवित्र, और कहां भगवान का सर्व पाप नाशक मनोमोहक नाम, ये तो केवल संत कृपा। हाय मैं महाकपटी पापी निर्लज्ज, ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, पर मैं कृपा पात्र हो गया, तभी मेरी जिभ्या से ये नाम निकला। आज से मैं दृढ़ निश्चय करता हूं, ये संत संग का फल है। सबको ऐसा ही दृढ़ निश्चय करना चाहिए। अब मेरा जितना भी समय है, मन इंद्रियों के अधीन ना होकर प्राणों को वशीभूत करके मैं ऐसा भजन करूंगा कि एक क्षण भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ूंगा। देखो निश्चय में ताकत है, निश्चय में करते करते ऐसा निश्चय होगा तो ऐसा भी होगा, अगर आज ही निश्चय तो ऐसा भी होगा। जैसा सोचना है वैसा तुम अभी निश्चय करो, तुम्हारी सोच ही तुम्हारे आगे का जीवन होगा। जैसा जीवन तुम चाहते हो, सुखमय शांतिमय, वो केवल तुम्हारी सोच होगी, सोच से ही वो जीवन बनेगा, और जैसी सोच करनी अभी निश्चय करो। यदि भोगों का चिंतन, भोग भोगों की क्रियाएं, नाना प्रकार का छल कपट, तो दुर्गति अशांति क्लेश विषाद, क्या चाहिए तुम्हें? शांति सुख आनंद, तो निश्चय करो। अजामिल जी निश्चय करते हैं, आप मेरे को जो समय मिलेगा, मन और इंद्रियों की गुलामी नहीं करूंगा। अब लो निशानी, अब नाम से जितनी श्वासें हैं अब बहुत सावधानी पूर्वक नाम जप करते हुए व्यतीत करूंगा। ये बड़ी बात। अब ये वासनाएं मुझे फंसा नहीं सकती। क्या हो गया? निश्चय हो गया। हमारा निश्चय ढुलमुल होता है, आज नहीं करूंगा, फिर वही जहां वेग आया फिर उसी में प्राण निकल जाए, नहीं आज्ञा के विपरीत कदम नहीं, अभी महात्मा बन जाओगे। महात्मा आंतरिक स्थिति होती है। भगवान की इस माया ने मुजधम को कैसा फंसा लिया, बहुत ही नाच नचाया, अब नहीं नचा पाएगी। क्यों? क्योंकि आप समर्थ बल मिल गया नाम का, अब नहीं नचा पाएगी। प्रहलाद जी भगवान

भगवान श्री नरसिंह देव से कहते हैं, मुझे आपकी माया से कोई भय नहीं, आपका चरणामृत और आपका नाम जाप करके, आपकी लीला कथा का गायन और श्रवण करके मैं इस दुस्तर माया को पार कर जाऊंगा, मुझे भय है। तो इन प्राणियों को जो आपके नाम से, आपकी लीला कथा से दूर हैं और माया प्रपंच में रत हैं, प्रभु इन पर कृपा कर दीजिए, अब मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपकी कृपा हम पर हो गई है, हमें नाम मिल गया है, आपका चरणामृत मिलता है, आपकी लीला कथा, इससे बढ़कर भगवत कृपा और क्या होगी। प्रभु कृपा चाहिए इन प्राणियों को। भगवान नाम का निरंतर रटन करते हुए अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, नियम लो अब व्यर्थ काल तुम कबहू काल वृथा नहीं जाए, राधा राधा हर सेकेंड सार्थक करो, कोई भी सेकेंड खाली न जाने पावे, यही चतुरता है। राम ही भजे ते चतुर नर, बेईमानी करना, छल कपट करना, इंद्रियों की गुलामी करना, यह चतुरता नहीं है। चतुरता है जो तुम्हें समय मिला है उसमें नाम रूपी धन, एक बार बोला राधा, जमा हो गया श्री कृष्ण की बैंक में, कभी इसका विनाश नहीं हो सकता और ये ब्याज सहित आपको मिलेगा, महासुख मिलेगा। सोचो एक नाम त्रिलोक तारे, ऐसे नाम को हम क्यों छोड़ेंगे, हर समय नाम जप करेंगे, पता नहीं कौन सा अंतिम समय हो, क्योंकि अंतिम समय राधा नाम स्मरण हुआ तो हम पहुंच जाएंगे किशोरी जी के चरणों के समीप। अजामिल के चित्त में संसार से घोर वैराग्य हो गया, अब वो हरिद्वार गंगा के किनारे बैठ करके शांत भाव से अपने चित्त को भगवान के नाम में लगा दिया। भगवान नाम में लगाते ही मन शांत, बुद्धि शांत, निर्मल हो गई, क्योंकि निश्चय बड़े जोर का हो गया ना, ये निश्चय जोर का हुआ भगवत पार्षदों के दर्शन से। भगवान के एक नाम उच्चारण मात्र से उसकी कैसी महान सदगति हुई। सत्यो विमुक्तो भगवन नाम ग्रहण, देखो भगवान के नाम का उच्चारण का फल, नाम ने ही तो सब बात बना दी। वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूं, नाम जप करो अलग एकदम दिखाई देगा, अलग दिखाई देगा। देखो ना अजामिल को कैसे अनुभव हुआ स्वरूप का, नाम जप करो सब हो जाएगा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, अलग से करोगे तो विक्षेप हो जाएगा, क्योंकि सोहम और दासोहम का मार्ग ऐसे है, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा परत खगेश लगे नहीं बारा, और दासोहम में करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, आंख मूंद के दौड़ो वात्सल समुद्र हरि तुम्हें ऐसे घेरे हुए गिर भी नहीं सकते, वहां परत खगेश लगे नहीं बारा, ज्ञान के मार्ग में गिरने में देर नहीं लगती, और बचाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि तुम खुद ब्रह्म हो, बचो माया से। सत्यो भी मुक्त हो, देखो ना एक नाम ने सत्यो माने तत्काल काम बना दिया। नातः परम कर्म निबंध कृंतनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् नयत् पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। एक कर्म बंधनों का नाश कर देना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहता है ध्यान से सुन ले, अपने श्री चरणों के स्पर्श से तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले प्रभु के जो जन हैं उनका संग तीर्थपाद श्री हरि के नाम से प्रीति कराता है। बिना संग के नाम में ना परिचय होगा ना प्रीति होगी, भजन न हुई संग बिनु भजन बिना नहीं प्रेम,
जिन्हू भजन न छाड़िए धरिए या ध्रुव नेम, प्रभु से प्रार्थना करे, हे दीन बंधु दया करके नाम जापक संतों का संग दे दीजिए, भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य दे दीजिए। जिसको संत संग मिल गया और नाम की महिमा सुनने को मिली, नाम जपने का उत्साह मिला, इससे बढ़कर और कोई साधना नहीं है। नाम का आश्रय लेने से नयत पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। आहा, कोई भी कर्म दलदल उसे फंसा नहीं पाएगा। कर्म को दलदल की तरह कहा गया, जैसे दलदल में गिर जाए तो निकलना असंभव। नाम का आश्रय ले लो, दलदल ही नहीं रहेगा, सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। न नौका की जरूरत है, न तैरने की जरूरत है, राधा सूख ही जाएगा, समुद्र ही सूख जाएगा। आराम से चलो, प्रभु के नाम के अतिरिक्त और ऐसी किसी साधना में सामर्थ्य नहीं है। बैठा लो हृदय में, दौड़ भाग बंद करो, चाहे और कोई साधना करो, रजोगुण और तमोगुण अपना प्रभाव दिखाता रहेगा, पापों का पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं होगा। रजस्तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। एकमात्र नाम ऐसा है कि रजोगुण तमोगुण का नाश करके, सात्विक विकास करके त्रिगुणातीत स्थिति प्रदान कर दे। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस स्वरूप का बोध करने के लिए बड़ी कठिन साधनाएं बताई गई, नाम जब से सहज में, कोई भी ऐसा, अभी पीछे एक दिन स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें लिखा था कि कुंडलनी जागृत और सुषुम्ना नाड़ी का खुलना ये बहुत कठिन। गोपाल शास्त्र नाम में भी सुषुम्ना मार्ग संचारी, सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती मानो ब्रह्माकार वृत्ति, ये नाम से स्वाभाविक हो जाती है, स्वाभाविक हो जाती। कुंडलनी के जागरण में जो बड़े बड़े विघ्न है, नाम जप को पता भी नहीं चलता, वो जागृत हो जाती है, सुषुम्ना मार्ग अपने आप संचरित हो जाता है। कुछ उसको इन सब विषयों को न पढ़ने की जरूरत है, न कुछ करने की जरूरत है। राधा राधा राधा, हर समय नाम जप, सब सिद्धियां सब वैभव भगवान की ही तो नाम में छुपा हुआ है। परिचित, ये जो हमने तुम्हें बताया ये गोपनीय है। गोपनीय शब्द इसलिए कहा कि सब नाम पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। रोज चर्चा होती क्या आपका निरंतर नाम जपने में भाव बना, नहीं। कोई बिरला ऐसा जिसके ये बात हृदय में बैठ जाए कि वो मुझे तो बहुत बड़ी बात मिल गई, बहुत बड़ी वस्तु मिल गई। छोटा न समझो नाम को, इतना बड़ा अंकुश होता है और विशाल मत वाले गजराज को घुटनों के बल लाने के लिए पर्याप्त है। एक अंकुश मारे घुटने टेक देगा, जैसा कहेगा महावत वैसे चलना पड़ेगा। ये नाम अंकुश है, ये काल को भी घुटने में ले आवे, ऐसा अंकुश है नाम। देखने को लगता है राधा, देखने को लगता है कृष्ण, मत वाले काल को भी अधीन कर, समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। जिए काल वश ना पड़े, जीवित है लेकिन काल के अधीन नहीं, ये नाम का चमत्कार है। विश्वास मानो, जल में घर्षण शक्ति से बिजली पैदा हो जाती है, नाम जिभ्या पे चलेगा तो ऐसी बिजली पैदा होगी कि लोक लोकांतर में कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। पर करो ना, नाम जप करो, जिभ्या से निरंतर नाम रटो, मारे घूम रहे दुख निवृत्ति के लिए, कुछ नहीं होना। यदि नाम नहीं है तो थोड़ी देर के लिए ओस चाटने से थोड़ा तो गीलापन लगा, लेकिन प्यास नहीं बुझने। ये प्रभु के चरणारविंद की शीतल धारा, भक्ति की छोड़कर, नाम की छोड़ करके अन्य साधन रूपी ओस कण चाटने से प्यास नहीं बुझेगी।

गोस्वामी जी ने महामहिम नाम की महिमा प्रकट की। कहीं भी भाग के जादू कहां जाएगा, कोई तेरा दुख निवृत्ति का उपाय नहीं, क्योंकि जिससे तू दुख निवृत्ति चाहता वो भी काल से तो भयभीत ही है। जो काल को भयभीत कर दे वो है भगवान नाम। ले लो प्रभु के नाम का आश्रय, ले लो प्रभु के नाम का निरंतर जप करो। जो पुरुष श्रद्धा और विश्वास पूर्वक ये बात सुने और इसे जीवन में उतारे, तो चाहे जितने पातक हो गए उसे और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। ये नाम ही समस्त पातकों का नाश करके भगवत प्राप्त

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।

क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्म स्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: जिस वक्त आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी जी के विचार।
1: खुश कैसे रहते हैं? क्या सक्सेस से खुश रहते हैं? बहुत सक्सेसफुल लोगों को आपने देखा होगा, जानते होंगे अपनी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, क्या वो बहुत खुश है? पूरी तरह से अंदर से खुशी से भर रहे हैं, झूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लाइफ के एक मोमेंट को मजे से जी रहे हैं, या उनकी अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, आपकी अलग तरह की प्रॉब्लम्स है? जबकि आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स में देखोगे जो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, वो बहुत बेटर है उनसे जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। जैसे किसी कंपनी में जो जितना ऊपर बैठा है उसके ऊपर उतना ही प्रेशर भी है, उतनी ही टेंशन भी है।
2: सक्सेस इज नॉट
1: हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज सक्सेस। बट क्या हमको पता है कि खुश कैसे रहते हैं? कैन वी बी हैप्पी बाय प्रैक्टिस? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ। नहीं, डोंट से यस और नो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं इन्होंने कहा कि भाई प्रैक्टिस से हम खुश हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस से खुश नहीं हो सकते, तो आप मेरी साइड ले रहे हो, इनकी नहीं ले रहे हो। डोंट डू दैट। आप समझ रहे हो ना, मैं ऐसे ही करते हैं ना अपने माइंड में। वी से यस और नो, बट सेइंग यस और नो इज नॉट इंपॉर्टेंट। बट द थिंग इज कि हमको एक्चुअल में देखना है कि हम खुश कैसे हो रहे हैं, या ये पूरी दुनिया खुश कैसे हो रही है। इसको इस तरह से कहूं कि दिस डिजायर इज चॉइसलेस, यहां पर कोई चॉइस नहीं है। जैसे होता है ना कि आपको लाल रंग की शर्ट अच्छी लगती है या हरी रंग की, तो वहां पर चॉइस है ना। क्या यहां पर चॉइस है कि आपको खुशी अच्छी लगती है या दुख अच्छा लगता है, मजा अच्छा लगता है या दर्द अच्छा लगता है? कोई चॉइस है क्या यहां पे? कोई कहेगा मुझे दर्द अच्छा लगता है? नहीं, चॉइस नहीं है, दुख अच्छा नहीं लगता है, है ना। तो दिस इज चॉइसलेस। तो दैट मींस कि पूरी दुनिया, हर इंसान इंक्लूडिंग यू एंड मी, अपने इसी डिजायर को पूरा करने में लगा हुआ है अलग अलग तरीके से, खुश होने का डिजायर। तो हमको सिर्फ इतना सा समझना है कि पूरी दुनिया कैसे एक्ट कर रही है, और क्या कोई दूसरा भी रास्ता है? मैं कहता हूं हाँ है, ठीक है, जो इस दुनिया की सोच से परे है। वहां तक चलने के लिए पहले आपको अपनी सोच को छोड़ना होगा, क्योंकि मैं अगर कह रहा हूं सोच से परे है, तो वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, एक्चुअल में वो सोच से परे है। आई एम 100% श्योर आप में से कोई भी आज से पहले किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा। तो अब अगर आपको उस पॉइंट को ग्रैस्प करना है पूरी तरह से, तो जो भी कुछ माइंड में है उस सबको छोड़ना होगा कुछ देर के लिए। क्या आप तैयार हो जो भी कुछ है माइंड में उसको छोड़ने के लिए? फिर उसके बाद देख लेना कि हो सकता है जो मैं कह रहा हूं बकवास हो, तो उसको उठा करके कचरे के डब्बे में डाल देना, और जैसे आप स्ट्रगल कर रहे हो वैसे करते रहना, जैसे पूरी दुनिया कर रही है खुश होने की स्ट्रगल। और क्या है बचपन से आज तक अगर देखा जाए, आपकी लाइफ को अगर समअप किया जाए, और क्या है खुश होने की स्ट्रगल? वी नीड डिजायरेबल थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस रिलेटेड टू समथिंग। वो चीज है, उसका थॉट हमको खुशी नहीं देता है। डिजायरेबल थॉट क्या है? कि ये चीज मेरी होनी चाहिए, वो हमको खुशी देता है। कोई पर्सन है, उसके साथ में हमारा रिलेशन है, समवन। जब रिलेशन अच्छा होता है तो हमको खुशी मिलती है। ये रिलेशन अच्छा एक्चुअल में क्या है? क्या एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे कोई रिलेशन होता है या माइंड के लेवल पे होता है? हाँ, इसको दोनों चीजों को अच्छे से समझ लेना, बिकॉज इसमें सारे थॉट्स आ गए। अभी जहां हम खुशी ढूंढ रहे हैं वो थॉट्स में ढूंढ रहे हैं। मैं थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इसको भी क्लब करके एक वर्ड दे रहा हूं, थॉट्स। एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे हमारा किसी भी चीज से कोई रिलेशन नहीं होता है। आपका पैसे से क्या रिलेशन है एक्चुअल में, एट अ फिजिकल लेवल? क्या आप उससे जुड़े हुए हो किसी चीज के साथ में? मतलब जैसे जमीन है, तो एक्चुअल में आपको जमीन से क्या रिलेशन है? क्या वो जमीन आपकी है? इस सच को देख पा रहे हो? पेपर पे आपकी है, आपके माइंड में आपकी है, क्या एक्चुअल में आपकी है? ना आपकी है, ना आपके बाप की है। ये बात समझ आ रही है? ये बात किसी की नहीं है। वो जमीन किसकी है? नेचर की है। मान लो तो किसी पार्क में भी आप जाकर के बैठ सकते हो, ये पार्क मेरा है कि नहीं? तो पार्क आपका हो गया अगर एक्चुअल में आपने मान लिया तो। ये बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ। और ये मान लिया कि मैं गरीब हूं क्योंकि मेरे पास में अपना घर नहीं है, तो आप गरीब हो। तो ये सारा खेल माइंड के लेवल पे चल रहा है, एक्चुअल में कहीं भी नहीं है। मान ही तो रहे हो, ये आसमान मेरा है, ये तारे मेरे हैं, ये बादल मेरा है, ये बारिश मेरी है, ये नेचर किसके लिए है, इसका मीनिंग क्या है? अगर इसको कोई देखने वाला नहीं है, जानने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, इस नेचर की क्या वैल्यू है? अगर यहां पर कोई है ही नहीं, इस प्लैनेट पे अगर लाइफ नहीं है, तो इस सबका मतलब क्या है? तो मानने के ऊपर है ना कि ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा है। लेकिन हम ऐसे कभी सोचते नहीं है। हम क्या करते हैं, छोटा छोटी सोच, छोटा छोटा छोटा छोटा छोटा छोटा, बस मैं ये कपड़े मेरे, ये छोटी अलमारी मेरी, ये छोटा सा ये साइकिल मेरी, ये स्कूटर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये घर मेरा, बस वहीं पर उलझे रह जाते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं, है कि नहीं? तो हमारी दौड़ क्या है, इसको आराम से समझना। बिकॉज है ना, कहीं भी ये मत समझ लेना कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि पैसे की वैल्यू नहीं है, पैसे की बहुत वैल्यू है, ठीक है ना? मतलब वहां से कंफर्टेबल लाइफस्टाइल आपको मिलता है और कंफर्ट की वैल्यू है, पर उसका खुशी से कनेक्शन नहीं है। खुशी का कनेक्शन किसी और चीज से है, राइट अंडरस्टैंडिंग से है। हम कैसे खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे हम कहीं जुड़ते नहीं है ना चीजों के साथ में, ना लोगों के साथ में, बस अपने माइंड में जुड़ जाते हैं। जैसे आप किसी पर्सन के साथ में जुड़ गए तो जुड़ने में खुशी नहीं मिलती है, जुड़ने के बाद में जैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर ओन लिमिटेड डिजायर्स, जब वो हो रहा होता है तब हम खुश होते हैं, उसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। एकदम से मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ, सब बेकार है, घर भी बेकार है, ये भी बेकार है, वो भी बेकार है, मन करता है नहीं करता है, बहुत गुस्सा आ जाता है अंदर से, मतलब जितना मजा आया था उतना उससे बहुत ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा गुस्सा भी आता है, क्योंकि इस थॉट में मजा आता है, नो डाउट देयर इज प्लेजर इन दिस थॉट। जब हमारे अकॉर्डिंग कुछ हो रहा होता है तो मजा आता है, आता है नहीं आता है कि कोई पर्सन हमारे अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है, मजा आता है। जैसा हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है, सक्सेस मिल रही है, मजा आता है। जैसे ही हमारे अकॉर्डिंग कुछ होना बंद हो जाता है, आप एक बिजनेस कर रहे हो जब तक आपके अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है तब तक तो ठीक है, जैसे ही आपके अकॉर्डिंग होना बंद हो जाता है, आपके इंप्लॉइज ने कुछ ऐसा किया जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी, फिर धीरे धीरे आप देखोगे उसके अंदर कड़वाहट आने लग जाएगी। जिसके अंदर जितनी ज्यादा कड़वाहट आ गई, समझ जाओ खुशी से उतना ही दूर है, जी रहा है, जिंदा लाश है। ये एक प्रॉब्लम है थॉट के लेवल पे खुश होने में। दूसरा प्रॉब्लम, अगर आपने इस थॉट को पकड़ा है जिसकी वजह से आप खुश हो रहे हो कि मैं उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हूं, जिस इंसान को मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं या करती हूं, इसकी वजह से आप खुश हो रहे हो, तो क्या इसका अपोजिट थॉट यानी कि ये रिलेशन कभी भी खत्म हो सकता है, वो उसके पीछे नहीं पड़ा हुआ है, उसका पीछा नहीं कर रहा है? तो क्या जहां पर आप सुखी हो रहे हो उसके पीछे दुख नहीं है? या ये कह लो कि ये एक सिक्का है, उसका हेड है सुख, मतलब आप एक रिलेशनशिप की इस साइड को देख करके खुश हो रहे हो कि अभी मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूं, हमारी शादी हो गई, जिसके साथ मैं रिलेशन में रहना चाहती थी या चाहता था, और हमारा रिलेशन आज बहुत अच्छा चल रहा है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक है आज आप रिलेशनशिप में,

0: हाँ हो गया हो गया हो गया, मतलब यही आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट टू हैपन। तो जितना हम खुश हो रहे होते हैं उतना ही दुख भी होगा या नहीं होगा, और अगर उस मोमेंट में हम खुशी ना हो तो दुख भी नहीं होगा, है कि नहीं? लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। अब इसको ऐसे मत समझ लेना कि मैं ये कह रहा हूं कि आप भी खुशी ना हो तो जिंदा लाश बन जाओगे, नहीं, समझ गए ना? तो ये सब जो हो रहा है वो सब तो वैसे ही होगा जैसा हो रहा है, बस कुछ ऐसा हो सकता है आपको समझ आ जाए जिससे सब कुछ एकदम से बदल जाएगा। दूसरा क्या होता है, आज सब कुछ बहुत अच्छा है मेरी लाइफ में, वो बंदा वैसे ही एक्ट कर रहा है जैसा मैं चाहता हूं या चाहती हूं। मैं चाहता हूं कि वो मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे, वो जो लड़की है वो कर रही है, मैं बहुत खुश हूं। अगले दिन मैं घर में आया, मैंने देखा वो चीख चिल्ला रहे हैं, मैं दुखी हूं। तो जिसको आप खुशी कह रहे हो वहां पे तो डर ही डर है, खुशी तो मुझे कहीं नजर आ नहीं रही है, बहुत ही टेम्पररी है। और हम खुश कैसे होते हैं, कुछ प्लेजर्स में इंडल्ज हो करके, लेकिन वो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैं अपने बहुत सारे सेशन में टच कर चुका हूं कि वहां पर क्या प्रॉब्लम है। एडिक्ट हो जाते हैं हम, दोज आर मोर लाइक एस्केप्स। जब लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो हम एस्केप्स ढूंढते हैं, भागते हैं उस सिचुएशन से, मन नहीं करता कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भागो। तो ये एस्केप्स हैं, इस पर्सन के साथ में प्रॉब्लम है तो यहां से भागो उस पर्सन के पास जाओ। तो वी आर ऑलवेज रनिंग फ्रॉम हियर टू देयर, और इस भागने के चक्कर में क्या होता है, जो हो रहा होता है एक्चुअल में उसको हम कभी देखते ही नहीं है कि अंदर हो क्या रहा है। हम तो भाग रहे हैं एक चीज से दूसरी चीज की तरफ, एक चीज को बहुत एफर्ट करके अचीव किया, उसके बाद में वो चीज या तो पुरानी हो गई या उससे बोर हो गए या किसी और के पास में उससे बेटर कोई चीज आ गई, गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज जिससे रिलेटेड आपके माइंड में बड़े अच्छे थॉट्स आ रहे थे कि मैंने पता नहीं क्या अचीव कर लिया, जब 10 लोगों के बीच में आप खड़े होते हो तो वो आपको गरीब की तरह देखते हैं, ये क्या किया है तूने, होता है नहीं होता है? और वो जिसकी वजह से आपके अंदर बड़े अच्छे थॉट्स आ रहे थे कि मैं तो पता नहीं क्या बन गया हूं किसी और को देख करके, हो सकता है जिसको देख करके ऐसे थॉट्स आ रहे थे वो आपसे और आगे निकल गया, अब और परेशान हो रहे हो। तो ये तरीका है जी दुनिया के पास में खुश होने का, यानी क्या जो मैं चाहता हूं वो हो जाए। कुछ भी हम अपने माइंड में कोई आइडिया बना लेते हैं, कोई कॉन्सेप्ट बना लेते हैं और हम चाहते हैं कि वो हो जाए तो हम खुश हो जाते हैं, बट हम कभी ये नहीं समझते वहां पर क्या फ्लॉ है। जैसे स्पेशली बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के, अगर आपने उनको ऑब्जर्व किया हो, वहां पर क्या हो रहा है आजकल, ये प्लास्टिक सर्जरी बहुत चल रही है, पता है आप लोगों को आइडिया है? हाँ, आप देखते होगे, मतलब कभी नोट किया हो कि कभी लिप्स बड़े हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, नाक बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, शक्ल पहले अच्छी थी अब और बुरी हो जाती है। तो समझो क्या हुआ, मतलब कितना फ्रेजाइल है कि शीशे में आपने अपनी शक्ल देखी और देख के कहा कि मैं, पूरी दुनिया आपको कह रही है कि आप बहुत सुंदर हो, लेकिन आपने देखा कि नहीं, मेरी जो नाक है ना वो लंबी है। तो अब आपको क्या चाहिए, छोटी नाक चाहिए। नाक को आप गए किसी डॉक्टर के पास में, जाके प्लास्टिक सर्जरी कराई, नाक छोटी करा ली, थॉट्स ही बदल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, और खुश हो गए देखते ही, वाह क्या किया है तुमने। लेकिन जैसे ही आपकी अगली मूवी आई तो ऑडियंस ने देख करके क्या, ये क्या फुद्दूपंती है, ये क्या कर दिया तुमने, पहले बेटर थी तुम्हारी शक्ल, अब बेटर नहीं है। तो वो थॉट बदल गया ना या नहीं बदला? वो थॉट जिसकी वजह से वो खुश हो रही थी, जिसकी वजह से पता नहीं कितना अपना काट पीट करवाई, ये करवाई वो करवाई, और करके शीशे में देखा, आह हा मजा आ गया, वो मजा कहां गया? जैसे ही चार लोगों ने आकर के बोला ये क्या है, पहले ही सही था, अब वहां भी नहीं जा सकते, नाक लंबी कैसे होगी, छोटी तो हो जाती है, समझ आता है? जिंदगी भर के लिए फंस गई ना वो, क्यों? क्योंकि वो खुशी कहां ढूंढ रही है,
1: लोगों के कमेंट्स,
0: या तो अपने ही एक आइडिया में, अपने ही माइंड में एक थॉट क्रिएट किया कि नाक लंबी मतलब बुरी, छोटी मतलब अच्छी, रंग काला मतलब बुरा, गोरा मतलब अच्छा, और फिर उसके पीछे भाग रहे हैं। कभी देखा ऐसे कुछ लोगों को, मतलब कुछ क्रीम व्रीम लगाई और उसके बाद में गोरे भी हो गए, लोगों ने कहा ये क्या भूत आ गया। होता है, क्योंकि रिएक्शन हो जाते हैं ना कई तरह के, कई स्पॉट्स पड़ जाते हैं और हो जाते हैं, हर चीज के अपने प्लस माइनस होते हैं ना, फिर इंसान कहते हैं ये क्या हो गया, पहले ठीक था मैं तो। तो सुंदरता कहां है, बाहर है अंदर है? एक्चुअल में असली सुंदरता किसको कहेंगे, कि जो है उसको बदलना, या जो भी है जैसा भी है उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेना, उसको रियल ब्यूटी कहेंगे अंदर से। बट ऐसी एक्चुअल में है, ऐसा हम कभी सोचते नहीं है, क्योंकि लोग हमारे आसपास में हमको रियलाइज कराने के लिए बैठे हैं। ये पूरी की पूरी जो दुनिया है, मार्केटिंग की दुनिया है, वो आपको ये जताने के लिए बैठी

है कि आप कितने भद्दे हो और वो कितने सही है। एब्स है, ये है, वो है, फेस मोटा है, ये है, पतला है, पता नहीं क्या क्या दिमाग में भरा पड़ा है। तो क्या इस तरह से कभी भी आप खुश हो सकते हो? इम्पॉसिबल। यही दुनिया की कहानी है। दुखी है लोग अंदर से, आंखों में एक सुकून नहीं मिलेगा, डीप सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, फड़फड़ाए हुए हैं, भाग रहे हैं, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सब कोशिश कर रहे हैं खुश होने की। कैसे कर रहे हैं? ऐसे ही कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। कहां जुड़ रहे हैं? थॉट के लेवल पे जुड़ रहे हैं। एक्चुअल में तो जुड़ते ही नहीं है। और चीजें, मोर पोजेशंस, वहां पर खुशी नहीं मिलती है। कुछ भी आप पोजेस करते हो किसी भी चीज को, कुछ देर के लिए खुशी मिलती है, उसके बाद में मिलनी बंद हो जाती है, वो ज्यादा कम लगने लग जाता है जो एक टाइम पे ज्यादा लगता था। आप लोगों का सबका एक्सपीरियंस है, बच्चे तो हो नहीं आप लोग। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ, अभी भी ये नहीं आप कह सकते डीपली, अगर अपने आप से सच बोलो शीशे में देख करके, कि जो भी है जैसा भी है मेरे बाहर मेरे अंदर, मैं उससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कुछ भी नहीं बदलना है इस दुनिया में, सब कुछ रहता है, रहे जाता है, चला जाए। ये नहीं कर सकते, इसका मतलब डर में जी रहे हो ना। आई एम नॉट टू श्योर आपके लिए क्या मायने रखता है, क्योंकि मेरे लिए इससे ज्यादा कोई और चीज मायने नहीं रखती, ये समझना कि भाई खुशी क्या है, खुश कैसे होते हैं। कुछ भी कर लो, वो जो डिजायरेबल थॉट है वो बना नहीं रहता है। डिजायरेबल थॉट इज ऑलवेज रिलेटेड टू समथिंग और समवन और आरसेल्व्स, नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं है। समथिंग, थिंग्स भी बदल रही है, उससे रिलेटेड थॉट्स भी बदल रहे हैं, सिचुएशंस भी बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, आप खुद बदल रहे हो। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट, सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, उसके लिए हम भूखे हुए पड़े हैं। तो समझ जाओ जहां पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जितनी ज्यादा बड़ी है, समझ जाओ लोग उतने ही परेशान है। आप कभी पहाड़ों पर अगर गए हो या ऐसी किसी जगह पर गए हो, किसी हिल स्टेशन पे, वहां आप जाकर के देखोगे जहां पे लोग पीसफुल है ना, अपनी लाइफ से खुश है, वहां बिना एंटरटेनमेंट के भी वो खुश है। दे डोंट नीड टू मच ऑफ एंटरटेनमेंट। जहां पर अंदर से जो जितना परेशान है, वहां पर उतना ही चीजें चाहिए अपना ध्यान बटाने के लिए, अपने ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए। मोबाइल, ये सब क्या हो रहा है मोबाइल के अंदर, ये सब हो रहा है। मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, टीवी सीरियल चाहिए, ये चाहिए, मतलब टिक करके बैठ नहीं सकते। और क्या किसी चीज पे डिपेंड हो जाना खुशी है, उसके एडिक्ट हो जाना ये खुशी है, या पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाना? कि खुश रहने के लिए आपको कोई चीज नहीं चाहिए, कोई चीज मतलब कोई चीज नहीं चाहिए। कि अगर आने वाली आपकी पूरी लाइफ के लिए जो भी चीजें आपके पास में है वो सब आपके पास से छीन ली जाए, आपसे ले ली जाए, तब भी आप खुशी से झूम रहे हो। इंसान है तो उनके साथ में भी आप खुश हो, उनके बिना भी आप खुश हो। अब ये नहीं कि इसका मतलब ना लोग ये निकाल लेते हैं कि हाँ, अगर मैं इसीलिए बात क्लियर कर रहा हूं, फिर नहीं तो माइंड में क्या आएगा, मैं कहूंगा कि चाहे कोई नहीं भी है तब भी आप खुश हो, तो आप क्या कहोगे? हाँ, बाहर में गई दुनिया। तो रिलेशन की और धज्जियां उड़ेगी, तब उसको इंडिपेंडेंस नहीं कहेंगे। इंडिपेंडेंस किसे कहेंगे? देखो, एक आदमी है वो कहता है कि मैं दुनिया के साथ में खुश नहीं रह सकता, उसको इंडिपेंडेंस कहोगे? क्योंकि रहना उसको दुनिया के साथ ही है। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भी चले जाओगे, किसी आश्रम में भी रहोगे, वहां भी तो लोग होंगे या नहीं होंगे? हाँ, तो रहना तो आपको लोगों के साथ ही है। तो एक आदमी कहता है कि नहीं, मैं इस दुनिया के साथ में खुश नहीं रह सकता, दुनिया बहुत बुरी है, ये है, वो भगोड़ा है, वो भाग रहा है। दूसरा है जो कहता है कि नहीं, मैं तो ना तभी खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ जब मेरे आसपास में चार पांच लोग हो, अकेले में मुझे बड़ा डर लगता है, इन सॉलिट्यूड मेरी हालत खराब हो जाती है, अजीब तरह के थॉट आ जाते हैं माइंड में। तो मुझे लोग चाहिए अपने आसपास में, कुछ लोग जिनके साथ में बड़बड़ कुछ ना कुछ चलता रहे, ताकि अंदर जो बड़बड़ हो रही है वो ना दिखे। दोनों को आप इंडिपेंडेंट कहोगे? जहां इंडिपेंडेंस नहीं है वहां पर खुशी नहीं है। इंडिपेंडेंस ही तो खुशी है, फ्रीडम ही तो खुशी है। चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, उसको अगर बांध दिया जाए, चाहे फिजिकल लेवल पे चाहे माइंड के लेवल पे, वो खुश कैसे हो सकता है? अपने अंदर झांक के देख रहे हो कि क्या हम बंधे हुए हैं, नहीं बंधे हुए हैं? अपनी तरह तरह की उम्मीदों से हम बंधे हुए हैं। उम्मीद है कि हाँ, अभी तक तो एज हो गई, मान लो 30 साल है ना, अभी तक तो वो नहीं हुआ, बहुत ट्राई कर लिया, जो मैं सोच रहा था या सोच रही थी वो परफेक्ट सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई, लेकिन एक उम्मीद है कि शायद 5 साल में हो जाएगी, 10 साल में हो जाएगी। अभी तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, लेकिन 5 साल बाद हो जाएगा, 10 साल बाद हो जाएगा। तो एक उम्मीद में हम जी रहे हैं, ये उम्मीद ही पिंजरा है।
इसमें आप बंधे हुए हो और हमको खुद को पता नहीं है। उम्मीद क्या, जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो जाए और क्या है? और ये इल्यूजन कि वो हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। जो भी आप सोच रहे हो, अब मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मतलब रियलिटी को मैं एज इट इज देख रहे हैं। सोच रहे हो ना ये वो ये, एक लॉटरी की टिकट भी अगर आपकी निकल जाए तो अभी सुनने में लगेगा कि हाँ 1 करोड़ की लॉटरी की टिकट निकल गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। कुछ देर के लिए होगा, कुछ दिनों के लिए होगा, उसके बाद में कुछ नहीं होगा। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिस पर हम किसी भी तरह के कोई भी थॉट पे डिपेंड ना हो खुश होने के लिए? ये बात ध्यान से सुन लेना, मतलब ये बहुत डीप है अगर इसको आप पकड़ पाओ तो। चीजों से आप एक्चुअल में नहीं जुड़ते हो, लोगों से आप एक्चुअल में नहीं जुड़ते हो, अपने जो आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं माइंड में बनाए हुए हैं सुंदर के बदसूरत के, उससे आप एक्चुअल में नहीं जुड़ते हो। कुछ करा लेने से आप सुंदर नहीं हो जाते हो, बदसूरत नहीं हो जाते हो, सिर्फ अपने माइंड के लेवल पे वो चेंजेस चल रहे होते हैं। समझ गए या नहीं? रिलेशन कभी एक्चुअल में परफेक्ट नहीं होता है, माइंड के लेवल पे कभी लगने लग जाता है सब कुछ परफेक्ट है, फिर लगने लग जाता है सब कुछ बेकार है ना। तो एक्चुअल में सब थॉट के लेवल पे हो रहा होता है, माइंड के लेवल पे हो रहा होता है। तो वहां पे हम फ्लॉ देख रहे हैं क्लियर कट कि वो थॉट्स बदलते चले जा रहे हैं। तो अगर हम थॉट के थ्रू खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, थॉट में फीलिंग्स आ गया, इमोशंस आ गया, थॉट्स आ गए, सब कुछ आ गया, उसके थ्रू अगर हम खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, थॉट के लेवल पे हम खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कभी खुश नहीं हो सकते। ये बात क्लियर है ना? मैं इसको रिपीट तो ना करूं ना? हाँ, क्योंकि थॉट का अपोजिट हमेशा तैयार रहता है। मेरा रिलेशन अच्छा है तो वो बुरा होने में एक ही 1 सेकंड का फर्क है, मेरे पास ये है वो जाने में 1 सेकंड का फर्क है, ये मिलने वाला है, मैं ये एफर्ट कर रहा हूं पिछले 5 साल से, बस अब मैं अपने गोल के पास पहुंच गया हूं, मिलने वाला है, वो फेलियर में 1 सेकंड का फर्क है। सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ खराब होने में 1 सेकंड का फर्क है, ठीक है ना? जैसे वो बदला, थॉट बदल गया, तो ऑल्टरनेट करता रहता है। तो एक तरीका है थॉट के लेवल पे खुश होने के, एक है बिना थॉट के खुश होने के। मतलब अपनी खुशी को थॉट से ना जोड़े, थॉट से किसको जोड़े? कोई काम करने को, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, वो बैठे रहने से नहीं आएगा, खुशी से नहीं आएगा। खुशी से पेट नहीं भरेगा, खुशी से बच्चों के स्कूल की फीस नहीं आएगी, खुशी से गाड़ी नहीं आएगी, बसों में धक्के नहीं खाना पड़ेगा, गाड़ी आएगी, बढ़िया है, बुरा नहीं है। वो किससे आएगा? थॉट से आएगा, माइंड से आएगा, एक्शन से आएगा। एक्शन के लिए पहले सोचना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं बिना सोचे समझे एक्ट करने लग जाओगे। तो थॉट को हम यूज कर सकते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेस को हम यूज कर सकते हैं पैसे के लिए, पैसे को हम यूज कर सकते हैं कंफर्ट के लिए, एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के लिए जो जरूरी है, ठीक है। खुशी के लिए क्या करें? ये नहीं हुआ, ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। क्या हो जाएगा? इतना कुछ तो हो रहा है इस दुनिया में, बारिश हो रही है वो हमको नहीं दिखती है, लेकिन मेरा ये नाम हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो कितनी देर तक टिकेगा उससे रिलेटेड थॉट? क्योंकि उस टाइम पे कुछ बुरा भी हो रहा होगा, हर चीज का प्लस माइनस होता है ना, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, सक्सेस फ्री में नहीं मिलती है। जब सक्सेस मिलेगी तो साथ में ऐसे भी लोग आकर के जुड़ जाएंगे आपके साथ में जो आपसे ज्यादा पावरफुल होंगे, और वो अपने मतलब के लिए आपको यूज कर रहे होंगे, आपको टॉर्चर कर रहे होंगे, तो वो तो मिल गया जो चाहिए था, वो वाला थॉट तो पूरा हो गया, लेकिन साथ में सफरिंग भी तो आ गई ना, वो वाले थॉट्स भी तो आ गए। हम ये चाहते हैं कि हमको ये तो मिल जाए लेकिन खोना ना पड़े, पाने के लिए खोना भी तो पड़ेगा, जब वो खोगे तो उससे रिलेटेड भी तो थॉट्स आएंगे, तो खुश कैसे हो गए? तो अगर हिम्मत है तो इस सच को देख लो, अगर देख सकते हो तो, नहीं देखना आपकी चॉइस है, कि थॉट के लेवल पे खुश होना इम्पॉसिबल। तो अब क्या करें, कैसे खुश होएं? क्या कोई और रास्ता भी है खुश होने का? क्योंकि लोगों को तो यही नहीं पता है कि बिना थॉट के क्या होता है, थॉट क्या होता है। एक बात बताओ, आप यहां पर बैठे हो, अपनी सांस चलाने के लिए आपको सोचने की जरूरत है क्या? अपने आप चल रही है। देखने के लिए सोचने की जरूरत है क्या? जो दिख रहा है उसको समझने के लिए सोचने की जरूरत है, उसको यूज करने के लिए

0: पे खाली नहीं बैठ सकते, पूरे दिन तो ऑफिस में नहीं रहते ना, घर पे होते हो, संडे का दिन भी मिलता है, बीच बीच में सुबह का टाइम मिलता है, रात का टाइम मिलता है, उस टाइम पे क्या कर सकते हो? खुश हो सकते हो? खुश कैसे होते हैं? कुछ करके खुशी होने वाली है? करके खुश होना मतलब थॉट के थ्रू खुश होना, विच इज इम्पॉसिबल, जो हम देख चुके हैं। तो कैसे खुश होगे बिना करे? सब कुछ अपने आप होता रहे, कुछ करने की जरूरत क्या है? जो हो रहा है वो कम है क्या? वी डोंट नीड थॉट टू बी हैप्पी। ये अगर इस दुनिया को समझ आ जाए तो कमाल हो जाए। अब आपको खुश रहना आ गया, अब इस खुशी को आपसे कोई छीन नहीं सकता है। अब आप थॉट को यूज कर सकते हो, थॉट आपको यूज नहीं करेगा। अभी आप थॉट के पीछे भाग रहे हो, फिर थॉट आपके पीछे भागेगा। बात समझ आई? आप अपने थॉट्स के पीछे ही तो भाग रहे हो, और कहां भाग रहे हो? सुबह से रात तक वो कर रहे हो जो करना पसंद नहीं है, वैसी जिंदगी जी रहे हो जो नहीं जीना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो नहीं कर रहे, क्यों? डर की वजह से। ये डर क्या है? थॉट है। कुछ अचीव करना चाहते हो जो पता है कि उसको अचीव करने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उससे लाख गुना ज्यादा जिन लोगों ने अचीव कर लिया उनका ही कुछ नहीं हुआ, तो मेरा क्या खाक होगा? फिर भी भागे चले जा रहे हैं अंधों की तरह। तो आप किसके पीछे भाग रहे हो? अपनी ही तो एक सोच है जिसको पकड़ के बैठे हो, उसको सच करने में लगे हुए हो। तो जब हमारी उम्मीद टूट जाती है कि थॉट से खुशी तो नहीं मिल सकती जी, पैसा मिल सकता है, ये वो, ठीक है, तो थॉट को उसी के लिए यूज करो और पूरी पावर के साथ करो। अब आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है, कोई डर है ही नहीं। थॉट मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है, डर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्या हो जाएगा? आई बात समझ नहीं आई? कुछ भी हो जाए ब्रेथ तो फिर भी चलेगी, और अगर इसके एक लेवल और आप डीप में जाओगे, जो आई एम नॉट टू श्योर के ब्रेथ नहीं भी चल रही होगी, ये बॉडी नहीं भी होगी, तब भी मैं हूं, मेरे होने के ऊपर इस सबका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसको एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, नहीं तो ये बिलीफ बन जाएगा। फिर आप कुछ इमेजिनेशंस बना लोगे, अच्छा मैं हूं इसका मतलब यहां से कुछ निकलेगा, वो कहीं और जाएगा, किसी कुत्ते की बॉडी में जाएगा, बिल्ली की बॉडी में जाएगा, हाँ घूम जाओगे, वो सब नहीं। लेकिन इसको आप कैसे समझ सकते हो मेरी इस बात को, कि मैं सच बोल रहा हूं झूठ बोल रहा हूं, बकवास कर रहा हूं, कैसे वेरीफाई कर सकते हो? जब टिक करके बैठोगे एक जगह पर, जो है उसको देखोगे, उसको समझोगे, तभी तो हो सकता है ना, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। कब ये देख सकते हो कि अगर आप अपने घर की छत पे लेटे हुए हो और ऊपर बादलों की तरफ देख रहे हो, तो कब इस सच को आप एज इट इज देख सकते हो और समझ सकते हो कि सब कुछ मुझ में है?
1: Thoughtless mind is key of happiness.
0: Thoughtless mind is key for happiness, but what is thoughtless mind? वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे? थॉट से ये देखना कि थॉट की क्या लिमिटेशन है, इसका मतलब आप थॉट से परे हो गए। नहीं तो अगर आप एक थॉटलेस स्टेट में जाने की कोशिश कर रहे हो तो आप एक वेजिटेबल के जैसे बन गए। समझे? एक है आप समझ करके कि थॉट खुश होने के लिए काम नहीं आने वाला है, ये बात आपको गहराई से समझ आ गई है, इसलिए मैं थॉट को यूज नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आई एम इंटेलिजेंट इनफ, आई एम वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड कि थॉट यहां पर काम नहीं आने वाला है। थॉट मुझे डीप सेटिस्फैक्शन लाइफ में नहीं दे सकता है, डिससेटिस्फैक्शन दे सकता है, सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता है, मुझे फियरलेस नहीं बना सकता, डर क्रिएट कर सकता है, बिकॉज थॉट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू समथिंग और समवन, थॉट कांट बी विदाउट अ रिलेशनशिप। आपके और मेरे बीच में स्पेस है, इसके बारे में सोच के दिखाओ, करो कोशिश, मेरे बारे में सोच के दिखाओ, सोच सकते हो, किसी ऐसी चीज के बारे में सोच के दिखाओ जिसकी कोई फॉर्म ना हो। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? माइंड काम नहीं कर सकता है जी वहां पर। तो थॉट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू समथिंग और समवन, जहां पर सिर्फ और सिर्फ दुख है। बट अगर हम समझ जाए इसको कैसे यूज करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर अगर वहां से दुख भी मिला तो दैट इज ओके, उस दुख की वजह से आप दुखी नहीं होगे। दोनों में फर्क समझ आया? एक है आपकी लाइफ में दुख आना, एक है उसकी वजह से दुखी होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपके सामने अगर आपका बच्चा बीमार है तो आपको दुख होगा।

0: रोओगे, फूट फूट करके रोओगे, दुखी नहीं होगे। दुखी क्यों होना है? प्यार है, आउट ऑफ लव इट इज कमिंग आउट, आने दो। दुखी क्यों होना है? दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट कंप्लीटली एंड एब्सोल्यूटली। दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू राइट अंडरस्टैंडिंग, समझ से। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं तो आप क्या कोशिश करोगे? बैठने की कोशिश करोगे, बार बार कहोगे अब मेरे माइंड में थॉट्स क्यों आ रहे हैं? थॉट्स नहीं आने चाहिए, थॉट्स नहीं आएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। क्या घुचू बनती है? थॉट्स आ रहे हैं, आने दो। थॉट्स चाहे हो चाहे ना हो, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। थॉट्स मुझ में आते हैं, मैं थॉट्स में थोड़ी आता हूं। डीप है, मतलब आई एम नॉट टू श्योर पकड़ पाओगे या नहीं। आप इतना ज्यादा थॉट्स में क्यों रहते हो? क्योंकि आपको उम्मीद है कि शायद फ्यूचर में कुछ होने वाला है। अगर ये उम्मीद ही टूट जाए तो ये फ्यूचर में मुझे खुशी नहीं मिलने वाली है। मिलेगी तो अभी मिलेगी, आज मिलेगी, यही मिलेगी, कल कुछ होगा ही नहीं।
1: सर, थॉट्स हमारे एक्शन को डायरेक्ट करते हैं ना सर, मतलब अगर मेरे
0: ऑब्वियसली ये जो थॉट्स हैं, इसका कनेक्शन किससे है? थॉट्स का एक्शन से, इससे, उससे, सारी चीज। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। एक्शन का किससे कनेक्शन है? एक्शन का हैप्पीनेस से कनेक्शन है ना जी। आप कोई काम करोगे इसलिए कि वो काम करके मैं खुश हो जाऊंगा, तो आप एक एस्केप ढूंढ रहे हो। बट आपको समझ आ गया है कि बिना कुछ करे भी खुश कैसे रहते हैं। अब अगर आप कुछ कर रहे हो तो दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस। नहीं तो आप गुलाम हो गए ना उस काम के। आप कहते हो ये काम करके मुझे बड़ी खुशी मिलती है, आपके घर वाले कहेंगे मत करो ये काम। आप काम करोगे उसके लिए आपको पैसा चाहिए, पैसा नहीं मिलेगा। काम कर रहे हो इसलिए कि चलो अगर मेरे को वो काम करते रहना, सक्सेस तो चाहिए, सक्सेस नहीं मिल रही है। गाना गाने में बड़ा अच्छा लगता है, गानों को सुनने को तैयार नहीं है आपका, करो क्या करोगे, हो गए ना दुखी। आपको ये समझ आए कि बाहर की दुनिया में मेरी जो जरूरतें हैं वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू निल है। हम क्या गलती कर रहे हैं? अपनी जरूरतें बढ़ाते चले जा रहे हैं, पता नहीं है, यही कर रहे हो आप गलतियां। क्या कभी बिना पैसे के आप एक हफ्ते तक, 10 दिन तक रहे हो अकेले? कभी नहीं। तो डर लगता है ना, मेरे से ये चला जाएगा तो क्या होगा, वो क्या होगा। गुलाम नहीं हो आप चीजों के। तो सुप्रीम इंटेलिजेंस किसे कहेंगे? खुश रहने का तरीका क्या है? अगर सिंपल वे में बोला जाए, आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि जो भी कुछ है मेरे पास में, वो सब चला भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतने सारे गुरुद्वारे हैं, वहां पर जाऊंगा, फर्स्ट क्लास लंगर मिलता है, बहुत टेस्टी होता है, घर के खाने से ज्यादा अच्छा होता है। खाना नहीं भी मिलेगा तो हाथ पैर है यार, जा करके पेड़ पौधे हैं, ये है वो है, तोड़ो पोड़ो खाओ, ये वो, खेतों में चले जाओ जाके, बोला आज थोड़ा काम करता हूँ, खाना खिला देगा, हाँ डीजे खिला दूंगा, क्या है। मतलब कहने का है कि पहले तो आपके अंदर से जो डिपेंडेबिलिटी है चीजों के ऊपर से वो निकल जाए, मतलब आपके जो खर्चे हैं वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। दूसरी तरफ से आपको थॉट को यूज करना आ जाए, आपको ये पता हो कि आई हैव द पोटेंशियल टू अर्न एज मच एज आई want, as much as I can, at the same time, I have the capacity to live without money. Fearless हो गए ना? ये दो extreme होती हैं। हमारी problem क्या है? ज्यादातर लोग इस दुनिया में problem क्या है? अपने potential पे काम नहीं करते, अपने आप को capable बनाने के ऊपर, कि भाई अपने आप को ऐसा बना दिया जाए कि अगर zero से कहीं तक भी पहुंचना है तो मेरे लिए खेल है, पैसा कमाना मेरे लिए खेल है। ऐसा किसी की आंखों में नजर नहीं आता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग होते हैं जिनकी आंखों में डर नजर आता है। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनकी भी आंखों में डर नजर आता है कि पिताजी का बिजनेस था, उन्होंने सेट करके दे दिया है, कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, डरे हुए हैं। तो कैसा अपने आप को बना दो एक तरफ से, वो कैसे बनेगा? थॉट से बनेगा। और कैसे बनेगा? मतलब खुश रहेंगे तो नहीं बनने वाला कि आप बैठे हुए आराम से, हाँ ठीक है अपने आप सब हो जाएगा, नहीं होगा जी। थॉट से अपने आप को बेटर बनाया, अपने ऊपर काम किया, ये किया, वो किया, वो किस लिए कर रहे हो आप? अपने आप को कैपेबल बनाने के लिए। लेकिन ये तो हो गई एक साइड, इसको आप यूज कर रहे हो अपने आप को बेटर बनाने के लिए। दूसरी तरफ से क्या है, आपको समझ आ जाएगा अब मैं चाहे अपने आप को कितना भी बेटर बना लूं, कितना भी पैसा कमा लूं, कैसा भी कुछ कर लूं, इस सबसे भी कुछ होने वाला नहीं है। देख लिया दुनिया में बहुत तरह के लोग, देख लिए हर तरह के, देख लिए वो भी, देख लिए जो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हुए हैं, वो भी देख लिए जो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। तो कहां है इसको ध्यान से समझ लेना। ये समझने में है कि जो थॉट्स है इसमें कुछ नहीं पड़ा है। ये सिर्फ सर्वाइवल के लिए जरूरी है, बस इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए थॉट जरूरी है, आपका समझदार होना जरूरी है, नहीं तो लोग आपको बेच के खा जाएंगे, बस इतनी सी जरूरत है। इतना अगर हमको समझ आ जाए तो क्या होगा, दिन में मानो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे जितना भी आपने काम किया उस वक्त तो पूरी तरह से थॉट को यूज किया अपने आप को कमाल का बनाने में, और बाकी टाइम क्या किया, थॉट को छोड़ छोड़ के बैठे हुए हो, थॉट की कोई जरूरत नहीं। अब जब आप देखोगे किसी को भी तो उस देखने में प्यार होगा और कुछ नहीं होगा।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

शानदार ट्रैक के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। भाई 7 बज चुके हैं और सुबह हो गई है प्यारी वाली, यानी कि अब टाइम हो गया है बिस्तर छोड़कर जाने का ऑफिस। तो देखिए, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या फिर अपने घर में ही क्यों नहीं है, आज के दिन को अच्छे से एंजॉय करने का तरीका ये है, अच्छे अच्छे गाने सुनिए, गर्मा गर्म मसाले वाली चाय की पहली चुस्की लीजिए और एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पे मॉर्निंग एक्सप्रेस शो को, जहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यानी कि यहाँ आपको मिलने वाला है एंटरटेनमेंट का डबल डोज, साथ ही आपको मिलेगा वेदर अपडेट से लेकर सोशल स्यापा और क्या कुछ हो रहा है आपके आसपास, यानी कि किस तरह का स्कैम आ गया है मार्केट में, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उसके लिए अभी आपको करना होगा इंतजार, तो बस फटाफट से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ सनेरा, सिर्फ तुम्हारा।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा।
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मिनी बस आ गई।
1: सुनो सुनो हेलो टिकट कटवा लेना।
2: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
3: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे। इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
4: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: लगता है बॉस हमें टॉस करने वाला है।
1: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जुन श्री, आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो चलिए बात करते हैं वेदर अपडेट की। अगर आज हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें 33 डिग्री जाने वाले, इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 28 डिग्री है। विंड स्पीड आपको 10 मिलने वाली है। ह्यूमिडिटी मिलेगी आपको 66%। इसी के साथ थंडर स्टॉर्म है आज, यानी कि बारिश अच्छी खासी होने वाली है। तो भाई यही बोलना चाहूंगी कि अगर घर से बाहर निकल रहे ना तो अपने साथ एक अम्ब्रेला जरूर कैरी कीजिए, बिकॉज मौसम का कुछ नहीं पता, कभी आंधे कभी तूफान कभी अच्छी खासी धूप। तो इस बदलते मौसम में अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: सबसे अलग। मेरी बात सुनते हो, रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी। सुबह की लेजीनेस को दूर भगाने के लिए सुनते रहिए मॉर्निंग एक्सप्रेस ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा।
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता
2: है। अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो हेलो टिकट कटवा लेना।
3: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
4: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे। इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
5: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम है। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो।

एक्सप्रेस, जहां फिलहाल मैं लेकर आ गई हूँ फिटनेस वाला फंडा। एंड फिटनेस वाला फंडा ना बड़ा ही सिंपल सा आज। कहा जाता है कम नींद और वेट गेन का कनेक्शन आखिर है क्या, तो बस आज वही डिकोड करने आ गई हूँ मैं यहाँ पर। और अगर बात की जाए ना कम नींद की और वेट गेन की, तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है दोनों का। आपको पता है सिर्फ एक अच्छी डाइट नहीं बल्कि बेहतर नींद फिटनेस का इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। अगर आप बहुत अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं लेकिन अपनी नींद का ध्यान नहीं रख रहे ना, तो सॉरी टू से आप फिट नहीं है बॉस। क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर आप अपनी प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे तो आपकी बॉडी फूड को एफिशिएंटली यूज करने के बजाय फैट स्टोर करना स्टार्ट कर देती है और बॉडी में आते हैं बहुत सारे चेंजेस, जैसे कि स्लीप डिप्रिवेशन हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, कॉर्टिसोल और इंसुलिन इम्बेलेंस हो सकता है, एंड इतना ही नहीं हाई कैलोरीज क्रेविंग बढ़ सकती है भाई। तो देखा नींद पूरी ना करने से कितनी ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है हमारी बॉडी में। सो स्टडीज के अकॉर्डिंग पुअर स्लीप का कनेक्शन वेट गेन और ओबेसिटी और डायबिटीज के रिस्क को पढ़ाता है। सो माय डियर लिसनर्स, आज एक हेल्दी स्लीप टिप आपके लिए लेकर आ गई हूँ। 7 से 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश जरूर करें, लेट नाइट स्क्रीनिंग टाइम को कम कर दीजिए एंड साथ ही फिक्स्ड स्लीप रूटीन मेंटेन करें। एक बात हमेशा ध्यान रखें, फिटनेस सिर्फ जिम और डाइट से नहीं गुड स्लीप से भी होती है। सो आज से स्लीप को ना करें इग्नोर, अच्छे से नींद ले, अच्छी से डाइट ले और सुनते रहे रेडियो महारानी 89.67। मिलते हैं म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: सबसे अलग। मेरी बात सुनते हो, रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

इस शानदार से ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंशी आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। एक छोटे से हग में कितनी बड़ी पावर होती है, यानी कि एक छोटा सा हग जो बिना बोले सारी मन की बातें कह देता है। और इसके पीछे एक साइंस है। साइंस ये मानता है कि हग से स्ट्रेस कम होता है, मूड बेटर होता है और दिल थोड़ा और ज्यादा खुश हो जाता है। और बस 20 सेकंड का ये छोटू सा हग हमारे बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स यानी कि ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि अच्छे के लिए है। तो बस यही कहना चाहूंगी, आज अपने फोन को थोड़ा सा साइड रख दीजिए, थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए और अपने लव्ड वंस को एक टाइट हग दे दीजिए जाकर। फिर देखिएगा कि आपका मूड और आपका डे कितना अच्छा होने वाला है। साथ ही सुनते रहिएगा रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: मोबाइल पर एक क्लिक से आप दुनिया घूम सकते हैं, पर वाहन चलाते समय मोबाइल यूज करने पर आप दुनिया से गुम हो सकते हैं।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

कि आपको पता है अगर आपको खुशियाँ पानी है तो उसका आसान तरीका क्या है? तो बहुत ही सिंपल तरीका है, किसी और को खुश कर दीजिए, फिर देखेगा कि आप खुद ब खुद खुश हो जाएंगे, बिकॉज इसे कहा जाता है रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस, जो हमें ये याद दिलाता है कि छोटी सी काइंडनेस किसी का पूरा दिन बदल सकती है। काइंडनेस के लिए बड़ा बजट नहीं चाहिए, किसी को जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दे दीजिए, खुश हो जाएगा इंसान। किसी के लिए लिफ्ट होल्ड कर रुक जाइए और किसी जरूरतमंद की मदद कर दीजिए बस, या फिर एक वार्म से स्माइल पास कर दीजिए किसी को, देखेगा फिर सामने वाले इंसान का दिन बन जाएगा। एंड कभी कभी हम ये जरूर सोचते हैं कि इस दुनिया में नेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन पॉजिटिविटी भी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी होती है। तो आज उस नेगेटिविटी को खत्म करने का काम आपका है, अपनी एक पॉजिटिविटी से किसी का दिन जरूर बनाइएगा। और रिसर्च भी ये कहती है कि काइंडनेस देने से स्ट्रेस कम होता है और हैप्पीनेस हार्मोन्स बहुत जल्दी बूस्ट हो जाते हैं। तो बस यही कहना चाहूंगी कि काइंडनेस को अपने साथ जरूर रखिए, हमेशा हर वक्त एक प्यारी स्माइल के साथ। साथ ही बने रहिए रेडियो महारानी, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: अपनी वाइफ को हैकर्स और रोड के माइकल शुमाकर वर्नबी से बचा के रखो। हैकर्स ऐसे फिशिंग करते हैं जैसे हम फिश समोसे का पोस्टर देख के दौड़ते हैं। और तुम शेडन लिंक मत खोलना, वरना तुम्हारा डेटा उड़ जाएगा इतनी स्पीड से कि गूगल मैप्स भी बोल देगा रिकैलकुलेटिंग लाइफ। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो, पासवर्ड 123 मत लिखना, ये देख के तो हैकर भी बोल देगा भाई इतना आसान क्या। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, ऐप्स अपडेटेड रखो, वरना स्कैमर्स पार्टी मनाकर तुम्हारे ही अकाउंट में नाचने लगेंगे।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

जब बात ट्रेवल की आती है ना, तो हम लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि फिर ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपनी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट ही इतनी होती है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। सो आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि ट्रेवल एक्साइटमेंट में प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज मत करना। अगर बात की जाए ना ट्रेवल टाइम की, तो आजकल ना एक ट्रेंड बन गया, एंड ट्रेंड क्या है, एयरपोर्ट जाते समय चेक इन या फिर फ्लाइट के टाइम बोर्डिंग पास की फोटो हम लोग जरूर शेयर करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम लोग तो चले कहीं घूमने। लेकिन पता एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये आदत आपकी सिक्योरिटी के लिए डेंजरस हो सकती है। तो भाई चलिए बात कर लेते हैं रिस्क की, कि किस तरह के रिस्क आ सकते हैं। सबसे पहले बात की जाए बोर्डिंग पास की, तो आपने देखा होगा बोर्डिंग पास के ऊपर एक बारकोड या फिर QR कोड होता है, उसमें हिडन होती है आपके इम्पोर्टेंट डिटेल्स, जैसे कि आपका नाम, PNR नंबर, फ्लाइट डिटेल्स, सीट नंबर, इवन फ्रीक्वेंट फ्लायर इन्फो। तो देखा कितना डेंजरस है। तो एक बार जरूर सोचेगा कि जब कोड आप ऐसे ओपनली शेयर कर रहे हैं, अगर किसी ने स्कैन कर लिया तो वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है, यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज हो सकता है। सबसे पहले तो आपकी ट्रेवल डिटेल ट्रैक की जा सकती है, और इतना ही नहीं पर्सनल डेटा मिसयूज हो सकता है, साथ ही आपका अकाउंट एक्सेस या फिर फ्रॉड का रिस्क बढ़ सकता है। सो माय डियर लिसनर्स, बी स्मार्ट, बोर्डिंग पास की फोटो कभी शेयर ना करें, अगर शेयर करना ही है तो बारकोड ब्लर करें। जी वैसे भी आजकल ना एस्थेटिक का जमाना है, तो हम सारी चीजें ब्लर ब्लर रखते हैं, एंड साथ ही अपनी पर्सनल डिटेल्स हाइड जरूर करें, सभी भी आप किसी भी तरह का कोई पोस्ट करते हैं। सो इन सारी चीजों का ध्यान रखें, सेफ ट्रेवल करें, स्मार्ट रहे, और सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

और भाई क्या हाल चाल है आपकी? बेहतरीन हाल चाल है ना? आपके बेहतर हाल चाल को और भी बेहतरीन बनाने के लिए आई हूँ मैं। आई नो बेहतरीन आपका हाल तभी होता है जब मैं यहाँ पर आती हूँ, आपसे बहुत सारी बातें करती हूँ, तो बस वही बातें करने आ गई हूँ। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस लेकर। सुबह 7 बजे आ गई थी, अभी फिलहाल बहुत सारी बातें कर रही हूँ आपके साथ और बातें करते करते ना एक सोशल स्यापा लेकर आ गई हूँ। एंड सोशल स्यापा फनी भी है लेकिन शॉकिंग भी है। ये कुछ लोग हैं जो प्यार से ना अपने लव्ड वंस को बाबू, सोना, जानू, मोटू ये सब नाम दे देते हैं। कहा जाता है कि इन नामों से उनका प्यार झलकता है, लेकिन आपको पता है ये नाम ना कभी कभी ऑफेंड कर सकते हैं किसी को। बस यही हो गया है इस शख्स के साथ। टर्की से एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया है, एक ऐसा वायरल केस सामने आ रहा है जिस पर लोग ना बहुत ज्यादा अपनी टिप्पणियां भी दे रहे हैं। इस इंसिडेंट में ये दिखाया गया है कि एक शख्स ने अपनी पत्नी का नाम बहुत ही प्यार से मोटी लिखा और उसे सेव कर लिया अपने फोन में। एंड जैसे पत्नी ने कॉल किया उन्हें उनके नंबर पर मोटी नजर आया, तो बस फिर क्या था, पत्नी चली गई कोर्ट, वहां पर कर दिया केस और बोला कि ये मेरी इंसल्ट है। बात भी सही है, अगर कोई इंसान मोटा है तो उसको पता है कि वो मोटा है, इसमें बताने की जरूरत क्या है। अगर कोई इंसान छोटा है तो उसको पता है कि वो छोटा है, फिर भी आप उसे जाकर बताते हो छोटी, बोनी, नाटी, अरे भाई क्यों करना। तो कह सकते हैं कि अच्छा खासा सबक सिखाया है। तो अगर आप भी किसी को प्यार से छोटू मोटू कहते हैं ना तो एक बार सोचेगा जरूर। और कोर्ट ने भी यहाँ पर क्या कहा वो भी आपको बता देती हूँ। कोर्ट ने भी कहा कि भाई प्यार में मजाक ठीक है पर इंसल्ट की एक लिमिट होती है, जो कि बहुत सही कहा। अगर प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाए तो कोई इंसान मोटा है और उसे हर कोई आके एक ही चीज कह रहा है कि कितना मोटा है, कितना खाती हो तुम, ये है वो है, तुम्हें तो कपड़े भी फिट नहीं होते, तो एक इंसान ऑब्वियसली बहुत सारी चीजों से डील कर रहा होता है। एंड ऐसे में आप प्यार भी उसको उसकी कमियां दिखाकर जता रहे हैं तो वो कैसा प्यार है, यही चीज इस कोर्ट ने कही। तब उनके हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है कि इस गलती की मैं माफी मांगता हूं और कंपनसेशन के लिए भी तैयार हूं और बस यही कहूंगा कि नेक्स्ट टाइम से कभी भी मोटी नहीं कहूंगा तुम्हें। और रही बात प्यार से नाम देने की, तो जो तुम्हारा नाम है अब से मैं उसी नाम से तुम्हें बुलाऊंगा। खैर ये इंसिडेंट फनी हो सकता है लेकिन ये इंसिडेंट ना हमें एक लेसन देता है और वो लेसन बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट को हमेशा संभाल के रखिएगा। चाहे फिर आप किसी को जानू कहते हो, स्वीटी कहते हो, क्वीन क्यों नहीं कहते हो, लेकिन भाई किसी को मोटू, गोलू या धन्नो ऐसी चीजें मत लिखिएगा। हो सकता है भाई कि आपका लव आपको हार्ट अटैक देने पर आ जाए। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि मजाक कीजिए लेकिन जब आपको पता है कि सामने वाला उस मजाक को वैसे नहीं ले सकता तो प्लीज हेल्दी मजाक कीजिए। आजकल हेल्दी मजाक भी कर सकते हैं आप लोग और खुश रहिए, हेल्दी रहिए, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। और बस आपके लिए छोटी सी वार्निंग थी कि कभी भी अपने लव्ड वंस को उनको किसी भी ऐसे नाम से मत बुलाइएगा जिससे वो ऑफेंड हो जाए। बाकी सब ठीक है, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं छोटे से म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
4: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना।
5: बहुत कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
4: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

इडली सांभर डोसा डोसा जी मेरा तो फेवरेट है इडली सांभर डोसा एंड मैं कभी नहीं स्किप कर सकती इस ब्रेकफास्ट को। लेकिन सोचेगा जरूर कि एक इडली आपको इतनी महंगी पड़ जाएगी दोबारा आप इडली की तरफ देखे भी ना। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ पर भाई एक इंसिडेंट लेकर आई हूँ। और इंसिडेंट ये है कि बैंगलोर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर को इडली खाना बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया। दरअसल इन्होंने एयरपोर्ट के कैफे से घी पौड़ी इडली ऑर्डर की, जिसका बिल इन्होंने लगा कि बहुत ज्यादा नॉमिनल होगा, लेकिन उसका बिल आया एक इडली का 315 रुपए। और जब इन्होंने ये बिल सोशल मीडिया पर दिखाया तो भाई बहुत ज्यादा ये रिसिप्ट जो है वायरल हो रही है। इतना ही नहीं, वायरल होने के साथ साथ लोगों ने कंपेयर भी किया है इस बिल को कि सिटी के जो दूसरे आउटलेट्स हैं वहां पर ये इडली कितने की मिल रही है। इन्हें आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां पर ये इडली सिर्फ 90 रुपए की मिल रही थी, ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा इस एयरपोर्ट ने इस पैसेंजर से चार्ज किया। तो भाई अब सवाल ये उठा है कि क्या एयरपोर्ट फूड प्राइसिंग पर कोई कंट्रोल है किसी भी तरह का, या फिर रेस्टोरेंट अपने हिसाब से रेट्स डिसाइड करते हैं। तो भाई यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि एयरपोर्ट आउटलेट्स पर हमेशा रेंट, सिक्योरिटी और ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा होती है, इसलिए प्राइस भी हाई होता है। मान लिया इनकी बात, लेकिन भाई एक इडली 315 रुपए की, 150 भी नहीं यानी कि आधा भी नहीं, भाई 4 गुना मिला है यहाँ पर इनको इडली खाने का। जिसे देखकर ट्रेवलर्स भी कह रहे हैं कि कन्वीनियंस ठीक है, लेकिन इतना भी क्या महंगा करना, एक इडली जो वर्थ ही नहीं है इतनी महंगी, उसे आप इतना महंगा करके बेच रहे हो तो आगे से कौन ही खाना खरीदेगा। तो भाई आप हमें जरूर बताएगा कि अगर आप एयरपोर्ट पर जाते हो और आपको इतना एक्सपेंसिव बिल पकड़ा दिया जाता है तो आप क्या करेंगे। हमें बताने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर जाइए, वहाँ पर वॉइस मैसेज भेजिए और साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा।
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
2: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली को मिनी बस आ गई।
1: सुनो

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

तो बहुत सारी मस्ती के बाद, बहुत सारी अपडेट्स के बाद और बहुत सारे ट्रेंडिंग म्यूजिक के बाद फाइनली अब टाइम हो गया मेरा यहाँ से जाने का। और सुबह 7 बज रही थी, अब 10 बजने वाले हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। आप फिर मिलेंगे कल सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM पर। लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, साथ ही एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी के मॉर्निंग एक्सप्रेस के साथ बाकी शोज को, और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है. होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं.
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से. हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है.
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक. हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर.

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले मौसम के बारे में, जहाँ इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस फरीदाबाद शहर का तापमान बना हुआ, जहाँ कल शाम को थोड़ी सी बारिश जरूर हुई और सुबह आज होते ही फिर से कुछ रिमझिम, बेशक 10-15 मिनट से कुछ बारिश फिर बरसी। आज पूरा दिन भी बारिश का ही मौसम यूँ रहने वाला है, बारिश आती है या नहीं, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि बादल छाए रहने वाले हैं, बारिश के आसार हो सकते हैं। साथ ही बात की जाए क्योंकि तो AQI मेंटेन्ड नजर नहीं आ रहा, जहां AQI 100 से नीचे एक दो दिन के लिए जरूर उतरा लेकिन फिर से वापसी 200 तक पहुंचते नजर आ रहा। सबसे ये कहना चाहूंगा कि AQI मेंटेन करने के लिए जहां जहां पॉसिबिलिटीज हैं ताकि पॉल्यूशन कंट्रोल रहे, कापूल करें, गार्बेज ना जलाएं, पास गार्डन सोसाइटीज में वाटर फॉगिंग करें जैसे कि हवा को हम साफ सुथरा बना सकें।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे,

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौटा लेकर के शो, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। शो चल रहा है फरीदाबाद की गलियों से, और यहाँ मैं आप सबको बता दूं, जैसे कि हम सब जानते हैं SIR की अगर बात की जाए तो 10 दिन के लिए यहाँ टाइम लिमिट जो है बढ़ा दी है, जहाँ 14th of July को SI की सबमिशन डिटेल्स के लिए जो डेट अनाउंस थी उससे 10 दिन के लिए और इंक्रीज कर दिया गया है टाइम, क्योंकि अभी सभी काम जो थे पूरे नहीं हुए, सभी लोगों की तरफ से डिटेल्स फिल आउट नहीं की गई, कुछ की तरफ से सबमिशन नहीं हुआ, तो कुछ काम पेंडिंग थे जिससे कि हर कोई SIR की डिटेल्स फिल कर दे। तो मैं आप रेडियो महारानी आपसे यही कहना चाहेगा कि अपने दोस्तों से, रिलेटिव से और ऑफिस कलीग्स को ये जानकारी बता दें कि SIR का कार्य जल्द से जल्द पूरा करवाएं, ताकि फ्यूचर में उन्हें राशन, गैस या फिर मेडिकल या और कोई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ये SIR केवल वोट के अधिकारों के लिए ही नहीं, देश की नागरिकता के लिए भी है, तभी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और ये सब तक बात पहुंचाएं कि SIR के अकॉर्डिंग जो भी फॉर्म्स फिल करने हैं टाइम टू टाइम उसे फिल अप कर ले, 10 दिन का टाइम और दे दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो प्लीज़ SIR की डिटेल्स फिल अप करें। बाकी चर्चा करता रहूँगा, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना।
2: बहुत कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरले आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वॉर्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वॉर्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधरा थेरेपी, वॉर्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
5: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
6: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरले आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरले आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

0: सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर, जहां अगर सिनेमा के गलियारों की चर्चाएं की जाए तो यहां पे बात करते हैं द प्राइड ऑफ भारत छत्रपति शिवाजी महाराज, जहां ऋषभ शेट्टी टाइटल रोल प्ले कर रहे हैं और अमित त्रिवेदी इसे कहानी में म्यूजिक कंपोज किया है। जहां बात की जाए तो अमित त्रिवेदी का नाम जुड़ते सारे इस कहानी को और ज्यादा बज मिलते हुए नजर आए। संदीप सिंह के बने डायरेक्शन में बन रही ये कहानी लगभग 500 करोड़ के बजट के साथ बनाई जा रही है, जिसको 2028 के अराउंड फर्स्ट हाफ में रिलीज किया जाने वाला है। बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार के बारे में तो यहाँ पर किरदार को इतने बढ़िया तरीके से डिफाइन किया जा रहा है कि इस मूवी की मेकिंग में स्टोरी राइटिंग में ही लगभग 2 से 3 साल निकाले गए कि कहानी को इतने बढ़िया तरीके से बनाया जाए कि हर कोई कहानी देखते हुए टिक जाए। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर और भी पहले काफी सारी कहानियां बनते हुए नजर आई, लेकिन इस कहानी में क्या अलग होने वाला है उस बात की अगर चर्चा की जाए तो डायरेक्टर साहब का कहना है कि यहाँ पे सेट्स को ही हमने इतने बढ़िया तरीके से डिजाइन डेवलप और मेंटेन किया है कि आप कहानी को देखते सार खुद सोचेंगे यार कि हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर में ही पहुंचते नजर आए सेट्स को इतने बढ़िया तरीके से, साथ ही विजुअल्स को भी उस हिसाब से मेंटेन किया गया। इंतजार खैर कुछ ज्यादा लंबा होने वाले, लगभग 2 साल का वेट और उसके बाद ये कहानी होने वाली आउट ऑन थिएटर्स, जिसको पैन इंडिया रिलीज किया जाने वाला इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, तो रहेगा इंतजार। बाकी ऐसी और भी चर्चाएं करता रहूंगा सिनेमा के गलियारे से, लेकिन उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ फिल्मेटॉनिक आरजे मॉनिक लेकर के शो फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात करें थिएटर डेब्यू के बारे में। जी हाँ, शौरा सिद्दीकी की अगर बात की जाए, डेब्यू होने जा रहा है थिएटर में, जहाँ पे नकाब प्ले करते नजर आने वाले हैं। जी हाँ, अगर बात की जाए और ये उनके फादर यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी उनको मौका देते नजर आ रहे हैं, जो उनके साथ ही स्टेज शेयर करते नजर आने वाले हैं शौरा सिद्दीकी। 25 साल बाद थिएटर में वापसी कर रहे हैं नवाजुद्दीन। और नवाजुद्दीन की अगर बात की जाए, हम सब जानते हैं जो भी किरदार प्ले करते नजर आते हैं थिएटर्स से अलग, अगर सिनेमा की दुनिया की बात की जाए, उनको जो भी किरदार दिया गया उसमें इतना ज़्यादा ढल जाते हैं। इवन यहाँ नवाजुद्दीन का हमेशा कहना है कि जब भी मुझे स्टोरी मिलती है, मैं कहता हूँ यार एटलीस्ट 5 से 6 महीने का मुझे टाइम दे दीजिए, बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि मैं जस्ट एक प्ले करके या फिर शूट करके चला जाऊँ। मैं उस किरदार को इतने बढ़िया तरीके से निभाना चाहता हूँ कि लगना चाहिए कि यार ये इंसान ही वही ओरिजिनल करेक्टर है जो प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए नवाजुद्दीन थिएटर से निकले हैं तो बहुत मंजे हुए आर्टिस्ट हैं। और वही 25 साल बाद नवाजुद्दीन फिर से स्टेज यानी कि थिएटर के स्टेज पर कदम रखने वाले हैं, वो बहुत धमाकेदार होने वाला है। नकाब की अगर बात की जाए, परितोष पिंचर ने लिखा है इस कहानी को और डायरेक्ट भी किया, जो कॉमेडी और थ्रिल से भरपूर होने वाली है। अब फैंस यही जानना चाह रहे हैं कि यार कब देखने का मौका मिलेगा नवाजुद्दीन को फिर से थिएटर्स में। उस डेट की अनाउंसिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो बताएंगे कब होने वाला ये थिएटर प्ले। लेकिन ऐसी और भी बहुत सी चर्चाएं भी तो लाएं बॉस, उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे कि डेट क्या फाइनलाइज अनाउंस की जाएगी। लेकिन इसके बाद सिनेमा के गलियारों में बहुत सी चर्चाएं, कुछ नए गानों की, ट्रेलर की, टीजर की, तो कुछ नए डेब्यू की भी हैं जो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके, और ये गाना आप सभी के लिए।
1: जी जी यारो मुझे मुआफ करो,

बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम पी लीजिए, हमारे हाथ से दो चार जाम पी लीजिए। पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक, हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लॉज आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ फिल्मी गलियारे में घूमते हुए अब हम पहुंचे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर और एक बहुत बढ़िया सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो। माना रिलीज हुए इसको काफी लंबा अरसा हो गया क्योंकि 3 जुलाई को ही रिलीज हुई थी, 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर राजकुमार हिरानी का ये डेब्यू भी रहा और डेब्यू के रूप में यहाँ बहुत बढ़िया धमाल मचाते नजर आए। स्पेशली बात की जाए तो यहाँ पे एक किरदार अरशद वारसी का। अरशद वारसी यार मूवीज में बहुत सारे किरदार निभाते नजर आए हैं, कभी कॉमिक रोल्स, कभी छोटे रोल, कभी फुल फ्लेज रोल्स, लेकिन ओटीटी पर आने से ना अरशद वारसी को कैरेक्टर्स कुछ ऐसे मिले हैं जहां पर लगा यार अरशद वारसी को देखने का जो नजरिया था बिल्कुल बदल गया। सबसे पहला मौका था जब मैं आपको बताऊं कल्की में अरशद वारसी का किरदार इतना डिफरेंट और यूनिक था, लग रहा था यार अरशद वारसी को कभी ऐसा मौका मिला नहीं, ऐसा करेक्टर नहीं मिला, क्यों भाई इतनी बढ़िया एक्टिंग, कितने बेहतरीन तरीके से किरदार निभाया और वो ही प्रोसेस फिर से रिपीट होते नजर आए जहां अरशद वारसी को यहाँ पे किरदार मिला प्रीतम एंड पेड्रो में, बहुत ही धमाकेदार। तो बॉस यहाँ प्रीतम और पेड्रो की बात करते अपने आप में कहानी तो बहुत बढ़िया है ही, लेकिन अरशद वारसी के फैंस भी बहुत ज्यादा खुश हुए कि यार कहानी तो धमाल मचाए लेकिन अपने करेक्टर को प्ले करते हुए पूरी प्योरिटी के साथ सबके सामने आए हैं अरशद वारसी, 100% अपने किरदार को निभाते नजर आए। प्रीतम पेड्रो की अगर बात की जाए तो कहानी बहुत बढ़िया है, ऑलरेडी अच्छा खासा व्यूज भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ डिफरेंट और यूनिक, और अगर कहा जाए कि आजकल के किड्स किस और जा रहे हैं तो वो कुछ रियलिटी भी सबके सामने रखते हुए नजर आई है ये कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 9654896896 पर। बाकी ऐसी और भी चर्चाएं लेकर के आता रहूंगा सिनेमा के गलियारे से यानी कि इसी पिटारे से, लेकिन उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यह बात करते हैं बटवारा 1947 के बारे में, जहां इसके टीजर रिलीज पर बॉबी देओल ने अपने भाई यानी कि सनी पाजी के लिए बहुत प्यारा रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि यू आर द बेस्ट भैया कहा, और ये फिल्म को अमेजिंग बताते हुए टीम को ऑल द बेस्ट भी विश किया। बॉबी ने टीजर शेयर करके लिखा कि वो फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड है। इवन फैंस भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जहां पर बटवारा 1947 पार्टीशन पर बेस्ड हिस्टोरिकल ड्रामा होने वाला है। और सनी पाजी के यार करेक्टर की अगर बात की जाए तो बटवारा के टाइम की या थोड़ी फौजी लोग या कुछ ऐसे किरदारों पर बहुत जमती नजर आती है, जहाँ फैंस भी इनकी कहानी को पसंद करते। 14 अगस्त 2026 को कहानी मेंशन होने की बात है। अब देखते हैं कहानी को कितना प्यार मिलता नजर आएगा। बाकी चर्चाएं होती रहेंगी, पहले कॉन्ट्रैक्ट।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन।

हर बंदी के मुंह से निकले चीख, हाथ को पड़ पूरे दिल में लगा, जो कहती है करके दिखा, सुन में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फिल्मी प्लेबैक। यहाँ दोस्तों बात करते हैं राख के बारे में। राख एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज जो ओजी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होती है और जहाँ पर अली फैजल, सोनाली बेंद्रे, हमें बशीर और राख

अली फजल एक रॉकी कॉप के रूप में है जो केस सॉल्व करने की कोशिश करता है, जहाँ इससे कहानी को सीम किया गया और अच्छा खासा प्यार बटोरते नजर आई है रात। अगर आपने ये कहानी देखी तो जरूर बताइए कि ये कहानी कैसी लगी, जहाँ सस्पेंस भी है और टेंशन भी। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9654896896 पर बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी। उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ।

0: मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो, मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
1: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस. कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था.
5: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश.
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया.
6: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है.
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया.
6: आवारा हूँ, आवारा हूँ.
4: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है. तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM. कुछ हटके.

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लिप। यहाँ दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं सिनेमा के कलंदर में, जहाँ आज शत्रुघ्न सिन्हा साहब अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बॉलीवुड के उस सुपरस्टार की बात हो रही है जिनकी दमदार आवाज, जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी और बेबाक अंदाज ने उन्हें इंडस्ट्री का अलग ही आइकॉन बना दिया। और हाँ, उनका एक डायलॉग जो आज भी लोगों की जुबान पर है, खामोश। बात करें यहाँ पे जहाँ इन्होंने फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पटना पुणे से एक्टिंग की पढ़ाई की। करियर की शुरुआत तो उन्होंने नेगेटिव रोल से की, लेकिन उनके पावरफुल पर्सनालिटी और डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें जल्दी बॉलीवुड का सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस बना दिया। 70 और 80 के दौर में उन्होंने एक्शन, ड्रामा, रोमांस और कॉमेडी हर जेनर में जलवा दिखाया। कहानियों की बात की जाए तो कालीचरण, दोस्ताना, शान, नसीब, खुद गर्ज जैसी उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी दमदार थी कि छोटा सा रोल भी यादगार बन जा। ऐसी उनके बारे में और भी चर्चाएं करता रहूंगा, लेकिन उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महाराणा।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो।

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो चलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हो जाए
0: हो जाए।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात कर रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब की, जो कि एक सक्सेसफुल एक्टर ही नहीं बल्कि एक एक्टिव किरदार के रूप में जीना जानते हैं। बात करें तो लेकिन सिनेमा में उनका योगदान आज भी उतना ही याद किया जा रहा है जितना पहले। उनका कॉन्फिडेंट स्टाइल, बिंदास पर्सनालिटी और आइकॉनिक डायलॉग खामोश उनके बॉलीवुड का सबसे अलग स्टार्स में शामिल करता है। आज भी जब 70-80 का दौर याद किया जाता दमदार एक्टर्स की बात होती है तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब का नाम जरूर लिया जाता है। एक बार फिर से हैप्पी वाला बर्थडे शत्रुघ्न सिन्हा साहब को। बाकी ऐसी भी चर्चा होती रहेंगी लेकिन आज नहीं, अब से मुलाकात होगी कल के दिन सेम टाइम सेम जगह। रेडियो महारानी 89.6 FM को छटके।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

0: दुनिया के लिए लिखते न मेरे लिए लिखते, न दुनिया के लिए लिखते न मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते।
1: आज की कहानी किसी फिल्मी हीरो की नहीं बल्कि उस एक्टर की है जिसने बताया कि हीरो दिखता कैसा है ये जरूरी नहीं, हीरो काम कैसा करता है असली बात वही है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात करने वाले हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, और इनकी कहानी को नरेट करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है रीत। तो माइक ओवर टू रीत।
2: यूपी का एक छोटा सा कस्बा बुढ़ाना, वहां से एक लड़का निकलता है हाथ में केमिस्ट्री की डिग्री लेकर। कुछ वक्त नौकरी की पर दिल नहीं लगा। पता है दोस्तों, एक्टिंग का चस्का उन्हें ऐसा लगा कि वो दिल्ली पहुंच गए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। पर एनएसडी में दाखिला लेना तो सिर्फ पहला कदम था, असली चैलेंज था अपना पेट भरना। नवाज ने वहां के एक बिल्डिंग में वॉचमैन की नौकरी की। सोचिए, पूरा दिन गार्ड की ड्यूटी और शाम को एक्टिंग की प्रैक्टिस। उन्होंने ठान लिया था कि काम चाहे कोई भी हो, मंजिल से ध्यान नहीं हटाना है। 1996 में जब वो मुंबई आए तो उन्हें लगा था कि उनका हुनर उन्हें रास्ता दिखा देगा, पर मुंबई की भीड़ में वो कहीं खो से गए। एक ऐसा दौर शुरू हुआ जहां उनके लुक्स उनकी सबसे बड़ी रुकावट बन गए।
1: और बाद में कैसे उनका स्ट्रगल चालू हुआ करेंगे इसके बारे में बात, मगर थोड़ी देर बाद। फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सुनते रहिए कामयाबी की उड़ान। मैं हूँ मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, और मेरे साथ है स्टूडियो में मौजूद रीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप लोग जानते हो कि एक वक्त ऐसा था जहां नवाज के पास ना सर पर छत थी और ना ही जेब में पैसा, सिर्फ एक पुराना खत था जो उन्हें हर रोज गिरने से बचाता था। वो खत किसका था, करेंगे इसके बारे में बात। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और कामयाबी की उड़ान में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में और उनकी स्टोरी को नरेट करने के लिए मेरे साथ है रीत। तो माइक ओवर टू रीत।
1: मुंबई में नवाज का कोई गॉडफादर नहीं था। वो ऑडिशंस देते पर हर जगह से एक ही जवाब मिलता, आप हीरो जैसे नहीं दिखते। साल दर साल बीतते गए, वो 12 साल तक छोटे मोटे रोल्स करते रहे, कभी सरफरोश में एक मिनट का रोल तो कभी मुन्ना भाई MBBS में एक पॉकेट मार। पैसे नहीं होते थे तो दोस्तों के साथ एक कमरे में रहते और उनके लिए खाना बनाते ताकि रहने की जगह मिल सके। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो टूटने लगे थे, तब उनकी माँ ने उन्हें एक खत लिखा। उसमें लिखा था, बेटा कचरे के ढेर की जगह भी 12 साल में बदल जाती है, तू तो फिर भी इंसान है, हिम्मत मत हारना। बस वही एक लाइन उनका सहारा बन गई। उन्होंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे।
0: और कैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने छोटे छोटे रोल्स के बाद करा फैजल खान का रोल, द आइकॉनिक रोल, करेंगे इसके बारे में भी बात, मगर थोड़ी देर बाद। सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड मेरे साथ है स्टूडियो में मौजूद रीत।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: हर इंसान की लाइफ में एक सेटबैक आता है और फिर हर इंसान कमबैक करने की कोशिश करता है, और ऐसा ही था नवाजुद्दीन सिद्दीकी की लाइफ में। अभी तो सिर्फ स्ट्रगल था, अब देखिए असली धमाका, क्योंकि अब कहानी में एंट्री होने वाली थी एक ऐसे किरदार की जिसने रातों रात बॉलीवुड के सारे बड़े स्टार्स की छुट्टी कर दी थी। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड बंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम लोग बात कर रहे हैं द लेजेंडरी एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, और उनकी लाइफ की स्टोरी को नरेट करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है रीत। तो माइक ओवर टू रीत।
1: कहते हैं ना कि टैलेंट को आप ज्यादा देर तक छुपाकर नहीं रख सकते। 2012 में वक्त ने ऐसी करवट ली कि पूरा बॉलीवुड देखता रह गया। अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर आई और पर्दा फट गया। नवाजुद्दीन जब फैजल खान बनकर स्क्रीन पर आए तो लोगों को समझ आया कि असली एक्टिंग क्या होती है। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये नवाजुद्दीन का उन सारे रिजेक्शंस को जवाब था जो उन्होंने बरसों तक झेले थे। कहानी फिल्म के गुस्से वाले ऑफिसर से लेकर वासेपुर के गैंगस्टर तक नवाज ने रातों रात सबको अपना फैन बना दिया। जो इंडस्ट्री उन्हें रिजेक्ट करती थी आज वही उनके पीछे लाइंस लगाए खड़ी थी। उनका स्ट्रगल अब हिस्ट्री बन चुका था।
0: और कैसे उन्होंने बॉलीवुड से रेड कार्पेट तक का सफर किया, करेंगे इसके बारे में भी बात मगर थोड़ी देर बाद। अभी आप सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, एंड मेरे साथ स्टोरी नरेट कर रही है रीत।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: क्या बात है, क्या चीज है पैसा? क्या बात है, क्या चीज है पैसा? क्या बात है, क्या चीज है पैसा?

0: सोचिए, एक वक्त जिस शख्स ने दूसरों के बंगलों के बाहर पहरा दिया, आज उसका अपना घर देखकर दुनिया दंग रह जाती है। वॉचमैन की वर्दी से लेकर कांस के एक्सपेंसिव टक्सीडोस तक, ये सफर सिर्फ सक्सेस नहीं, एक स्टेटमेंट थी। लेट्स टॉक अबाउट हिज फाइनल फ्लाइट। आज हम लोग बात कर रहे हैं कामयाबी की उड़ान में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, और कैसे उन्होंने रेड कार्पेट तक का सफर किया। करेंगे इसके बारे में बात, और इसके बारे में नरेट करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है रीत। तो माइक ओवर टू रीत।
1: आज का सीन देखिए दोस्तों, वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कभी वॉचमैन थे, आज कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर चलते हैं। इंटरनेशनल अवार्ड्स में उनका बोलबाला है। मुंबई में उनका अपना एक शानदार बंगलो है जिसे उन्होंने नाम दिया है नवाब। ये उनके पिता के लिए एक सम्मान है और उनकी अपनी मेहनत का इनाम। नवाजुद्दीन की कहानी हमें सिखाती है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपके पास पेशेंस है और आप अपनी स्किल्स पर काम करते रहें, तो दुनिया की कोई ताकत आपको उड़ने से नहीं रोक सकती। उनकी ये उड़ान आज हर उस यंग ड्रीमर के लिए एक उम्मीद है जो जीरो से शुरू कर रहा है।
0: जहां लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, वहां पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सफर चुना, क्योंकि असली पहचान मंजिल से नहीं, संघर्ष से बनती है। और ये कहानी हमें यही सिखाती है कि संघर्ष हमेशा जारी रखना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके जरूर बताइएगा। हमारा नंबर है 9654896896। मैं फिर मिलूंगा आप सभी से मंडे टू फ्राइडे शाम 5 से 8। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: You got to.
1: Pushpa, I hate water wasting रे. जा, जाके टंकी बंद कर.

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

गाना है फ्रॉम द मूवी MS धोनी और इसी गाने के साथ स्वागत है शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड, जहाँ मैं बात करती हूँ कुछ ऐसी कहानियों की जिन्होंने अपनी लाइफ की दिशा ही बदल दी। और सक्सेस कहते हैं एक ऐसा वर्ड है जो सुनने में बहुत ग्लैमरस लगता है, लेकिन उसके पीछे की कहानी ऑफन साइलेंट होती है, लोनली होती है और कई बार इनविजिबल होती है। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड, जहाँ मैं बात करती हूँ उन कहानियों की जो सिर्फ बैलेंस शीट में नहीं बल्कि हिम्मत, पेशेंस और रिस्क के पन्नों में लिखी जाती है। आज की स्टोरी कोई स्टार्टअप फंडिंग वाली फेरी टेल नहीं है, ना ही कोई ओवरनाइट वायरल सक्सेस। ये कहानी है पेशेंस की, ऑब्जर्वेशन की और उस कॉन्फिडेंस की जो भीड़ में ऑपोजिट जाकर डिसीजन लेने की हिम्मत देता है। इमेजिन करो एक छोटा सा सिंगल रूम अपार्टमेंट जहाँ स्पेस कम था लेकिन सपने बहुत बड़े थे, जहाँ लग्जरी नहीं थी लेकिन सीख बहुत थी, और जहाँ किसी ने ये डिसाइड किया कि जिंदगी सरकमस्टांसेस से नहीं डिसीजन से बनती है। ये कहानी उस इंसान की है जिसने कॉलेज की डिग्री पूरी नहीं की लेकिन मार्केट को ऐसे पढ़ा जैसे कोई किताब पढ़ता है, जिसने बिजनेस शुरू करने के लिए करोड़ों नहीं सिर्फ 5,000 रुपए से शुरुआत की और आज वही इंसान ग्लोबल रिच लिस्ट में जगह बना चुका है। बिलियंस की नेटवर्थ, हंड्रेड्स ऑफ स्टोर्स और एक ऐसा ब्रांड जो मिडिल क्लास की शॉपिंग हैबिट का हिस्सा बन चुका है। लेकिन हर बड़ी सक्सेस स्टोरी की तरह यहाँ भी एक ट्विस्ट है, क्योंकि शुरुआत बिजनेस से नहीं हुई थी, शुरुआत लॉस से हुई थी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक ऐसा बिजनेस जो ऑलरेडी घाटे में था। उस मोमेंट पे दो रास्ते थे, एक सेफ जॉब या अनसर्टेनिटी भरा रिस्क, और इन्होंने चुना बिल्कुल सही रिस्क। लेकिन रिस्क भी ऐसा जो समझ से लिया गया था, ना कि एक्साइटमेंट से। इन्होंने मार्केट को ऑब्जर्व किया, लोगों की साइकोलॉजी को समझा और सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस सीखी। आज के टाइम में हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन इस इंसान ने इयर्स तक क्वाइटली ग्राउंड वर्क किया। नो हाइप, नो मीडिया इंटरव्यूज, नो फ्लैशी लाइफस्टाइल, बस ऑब्जर्वेशन, स्ट्रेटजी और साइलेंट एग्जीक्यूशन। इंटरेस्टिंग बात यह है, जब पूरा मार्केट एक डायरेक्शन में भाग रहा था, ये इंसान ऑपोजिट डायरेक्शन में सोच रहा था और यही डिसीजन इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। क्योंकि कभी कभी सक्सेस भीड़ के साथ चलने में नहीं बल्कि भीड़ को समझने में होती है। तो आज हम सक्सेस को सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करेंगे बल्कि समझेंगे कैसे लॉस अपॉर्चुनिटी बना, कैसे पेशेंस प्रॉफिट में बदला और कैसे एक सिंपल साइकोलॉजी ने रिटेल इंडस्ट्री की डेफिनेशन बदल दी। लेकिन स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि जिस इंसान के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो स्पॉटलाइट से दूर रहना पसंद करता है। मीडिया से दूरी, सिंपल वाइट क्लॉथ्स और लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा सिंपल। लोग उन्हें एक निकनेम से भी जानते हैं जो उनकी पर्सनालिटी को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। लेकिन वो निकनेम क्या है और आखिर वो इंसान है कौन, ये मैं बताऊंगी लेकिन गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

गाना है फ्रॉम द मूवी अग्निपथ और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है बिजनेस अनप्लग्ड और आज मैं बात करने वाली हूँ एक साइलेंट बिलियनियर के बारे में जो स्पॉटलाइट से दूर रहकर भी करोड़ों लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। नाम है राधा किशन दमानी। जी हाँ, वही विजनरी माइंड जिन्होंने बनाया डीमार्ट। आज दुनिया इन्हें रिटेल किंग के नाम से जानती है। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के मुताबिक इनकी नेटवर्थ 1,00,000 करोड़ तक पहुँच चुकी है, लेकिन जर्नी शुरू हुई थी सिर्फ 5,000 रुपए से। स्टॉक मार्केट से शुरुआत, फादर के गुजरने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फिर एक ऐसा डिसीजन जिसने इन्हें मार्केट में एक अलग पहचान दी। जब पूरा मार्केट तेजी पर भरोसा कर रहा था तब इन्होंने गिरावट पर दाव लगाया और यही स्ट्रेटेजी खासकर हर्षद मेहता दौर में इनका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। लेकिन दमानी सिर्फ इन्वेस्टर नहीं थे, वो ऑब्जर्वर थे। इन्होंने समझा भारत की असली ताकत लग्जरी नहीं बल्कि वैल्यू शॉपिंग है और इसी ऑब्जर्वेशन ने जन्म दिया एक ऐसे रिटेल मॉडल को जो प्रॉफिट से पहले ट्रस्ट बनाता है। लेकिन सवाल अब ये है, सिंगल रूम से रिटेल एम्पायर तक का ये सफर आखिर शुरू कैसे हुआ, इनका बचपन कैसा था, फैमिली बैकग्राउंड क्या था और कॉलेज ड्रॉप होने के बाद इन्होंने खुद को कैसे रीबिल्ड किया, ये सब बताऊंगी। लेकिन लगान फिल्म का गाना आ रहा है, गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस डबल।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड। मैं आपके साथ गीत हूँ। हर बड़ी सक्सेस स्टोरी की शुरुआत किसी ऑफिस केबिन से नहीं बल्कि एक छोटे से कमरे से होती है बॉस। राधा किशन दमानी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। साल 1954, राजस्थान के बीकानेर में एक मारवाड़ी परिवार में जन्म और बाद में परिवार का शिफ्ट होना सपनों के शहर मुंबई में। लेकिन मुंबई की चमक हर किसी को लग्जरी नहीं देती। फैमिली सिंगल रूम अपार्टमेंट में रहती थी जहां स्पेस कम था लेकिन सीख बहुत थी। इनके फादर शेयर ब्रोकर थे और बचपन से ही नंबर्स, रिस्क और मार्केट की बातें इनको सुनने मिलती थी। शायद वहीं से ऑब्जर्वेशन की आदत डेवलप हो गई। इन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की मुंबई यूनिवर्सिटी से, लेकिन फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज छोड़ दिया। ये डिसीजन फेलियर नहीं था, ये क्लैरिटी थी, क्योंकि कई बार डिग्री से ज्यादा डायरेक्शन इम्पोर्टेंट होती है। लाइफ स्मूथली चल रही थी, लेकिन 1985 से 1986 में इनके फादर की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और वो गुजर जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अनसर्टेनिटी और इमोशनल प्रेशर सब एक साथ आ गया था। फैमिली का बॉल बियरिंग बिजनेस पहले से ही स्ट्रगल कर रहा था और उस टाइम इन्होंने एक टफ डिसीजन लिया, बिजनेस को बंद करने का। सोचिए, एक यंग लड़का फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और सामने कोई क्लियर रोड मैप नहीं। लेकिन यहीं से इनकी रियल लर्निंग शुरू हुई। इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर स्टॉक मार्केट को सीरियसली समझना शुरू कर दिया। कोई फैंसी सेटअप नहीं, कोई बिग कैपिटल नहीं, बस 5,000 रुपए और सीखने की भूख। वो मार्केट में सिर्फ पैसा कमाने नहीं, मार्केट को समझने आए थे। उन्होंने लोगों को ऑब्जर्व किया, फियर और ग्रीड को समझा और पेशेंस को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना लिया। 1990 का दशक इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे ड्रामेटिक फेज, जहां एक्साइटमेंट भी थी और अनसर्टेनिटी भी। और इसी फेज में दमानी ने वो किया जो बिगनर्स रेयरली करते हैं। इन्होंने भीड़ को फॉलो नहीं किया बल्कि भीड़ को पढ़ा, और यहीं से उनकी आइडेंटिटी एक स्मार्ट इन्वेस्टर के रूप में बनने लगी। लेकिन इन्वेस्टर से एंटरप्रेन्योर बनने तक का डायरेक्शन कैसा था, वो अचानक नहीं था। उसके पीछे था इयर्स का ऑब्जर्वेशन और एक सिंपल रियलाइजेशन। भारत का कंज्यूमर लग्जरी नहीं, वैल्यू चाहता है, और इसी रियलाइजेशन ने फ्यूचर में एक रिटेल रेवोल्यूशन की नींव रखी। लेकिन वो रियलाइजेशन बिजनेस में कैसे बदला, पहला स्टोर खोलने का डिसीजन कैसे आया और एक इन्वेस्टर अचानक रिटेलर क्यों बना, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

वेलकम बैक, मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड। इन्वेस्टर बनना एक जर्नी थी लेकिन एंटरप्रेन्योर बनना एक रिस्क। राधा किशन धवानी के बारे में बात चल रही है आज बिजनेस अनप्लग्ड में, जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पेशेंस और स्मार्ट डिसीजन से अपनी पहचान बना ली। प्रॉफिट भी था, रिस्पेक्ट भी थी, लेकिन अंदर कहीं एक ऑब्जर्वर अभी भी एक्टिव था। वो लगातार एक चीज नोटिस कर रहे थे, इंडिया का मिडिल क्लास शॉपर, शॉपिंग उनके लिए एक्सपीरियंस नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बजट इम्पोर्टेंट होता है और ट्रस्ट उससे भी कहीं ज्यादा। मार्केट में ऑप्शंस तो थे लेकिन अफोर्डेबिलिटी और कंसिस्टेंसी का गैप भी था। और यहीं से एक थॉट आया, क्या रिटेल को सिंपलर, चीपर और मोर रिलायबल बनाया जा सकता है। ये थॉट सिंपल था लेकिन एग्जीक्यूशन रिस्की, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप नंबर से खेलते हो, रिटेल में हैबिट से। साल 2002 मुंबई के पवई में एक क्वाइट शुरुआत हुई, पहला डी मार्ट स्टोर खुला। नो हाइप, नो ग्रैंड लॉन्च, बस एक क्लियर साइकोलॉजी, कम मार्जिन ज्यादा वैल्यू और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। लेकिन स्ट्रगल यहीं खत्म नहीं हुई बल्कि यहीं से शुरू हुई। रियल बिजनेस ग्लैमरस बाहर से लगता है लेकिन अंदर लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री, सप्लायर रिलेशन और ऑपरेशनल प्रेशर का कॉन्स्टेंट चैलेंज होता है। धवानी साहब ने एक अनयूजुअल डिसीजन लिया, स्टोर किराए पर नहीं होंगे, ओनरशिप होगी। ये डिसीजन शॉर्ट टर्म में हैवी इन्वेस्टमेंट था लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी। इन्होंने सप्लायर पेमेंट सर्कल भी छोटा रखा, 7 से 10 दिन, जहां बाकी कंपनीज 20 से 30 दिन लेती थी, वहीं इस अप्रोच ने सप्लायर्स का ट्रस्ट जीत लिया। और बिजनेस में ट्रस्ट आप जानते ही हैं, एडवर्टीजमेंट से ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन बिजनेस अकेले नहीं बनता, टीम बनाना, राइट पीपल चुनना और अनग्लैमरस कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। धवानी स्पॉटलाइट से दूर रहते थे लेकिन टीम के लिए उनकी क्लैरिटी बहुत विजिबल थी। नो अननेसेसरी एक्सपेंशन, नो प्रेशर ग्रोथ, बस सस्टेनेबल स्केलिंग। धीरे धीरे स्टोर्स बढ़ने लगे, कस्टमर लॉयल होने लगे और ब्रांड साइलेंटली हाउसहोल्ड नेम बनता गया। लेकिन हर ग्रोथ फेज के साथ प्रेशर भी आता है, एक्सपेंशन का प्रेशर, कॉम्पिटिशन का प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर। अब सवाल ये था, क्या ये स्लो एंड स्टेडी स्ट्रेटेजी फास्ट ग्रोइंग रिटेल मार्केट में टिक पाएगी? क्या साइलेंट ग्रोथ एक दिन एक्सप्लोसिव सक्सेस में बदलेगी या कंपटीशन इसे पीछे छोड़ देगा? इसका जवाब मैं आपको बताऊंगी लेकिन गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हट के शो है बिजनेस अनप्लग्ड। और कभी कभी सक्सेस शोर नहीं करती बल्कि स्टेडली बढ़ती रहती है। डीमार्ट के साथ भी यही हुआ, कोई ओवरनाइट एक्सप्लोजन नहीं लेकिन कंसिस्टेंट एक्सपेंशन। 2011 से 2012 के करीब 55 स्टोर्स और फिर 60, 75, 100 और देखते ही देखते सैकड़ों स्टोर्स का नेटवर्क। आज मल्टीपल स्टेट में प्रेजेंस और करोड़ों कस्टमर्स की डेली शॉपिंग हैबिट का हिस्सा। ये ग्रोथ सिर्फ नंबर्स की नहीं, ये ट्रस्ट की ग्रोथ थी। फाइनेंशियल्स भी इसी कहानी को रिफ्लेक्ट करते हैं। रेवेन्यू हर साल स्टेडली बढ़ता गया, प्रॉफिट इम्प्रूव होता गया और मार्केट कैप कई गुना बढ़ गया। 2017 में पैरेंट कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स का IPO आया और लिस्टिंग के साथ ही मार्केट ने क्लियर मैसेज दे दिया, साइलेंट एग्जीक्यूशन भी ब्लॉकबस्टर हो सकता है। नेटवर्थ के मामले में राधा किशन दमानी ग्लोबल रिच लिस्ट में नाम बना चुके थे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात उनकी सिंप्लिसिटी वही रही। व्हाइट क्लॉथ्स, लो प्रॉफिट लाइफ, मीडिया से दूर, शायद इसीलिए इन्हें मिस्टर व्हाइट एंड व्हाइट भी कहा जाता है। लेकिन इस एम्पायर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लग्जरी नहीं, डिसिप्लिन है। कम मार्जिन, फास्ट पेमेंट साइकिल, ओन स्टोर्स, कंट्रोल एक्सपेंशन और यही स्ट्रेटेजी इन्हें कॉम्पिटिशन से अलग बनाती है। क्योंकि हर सक्सेस स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा नंबर नहीं बल्कि लेसन होता है। राधा किशन दमानी की कहानी हमें बताती है, आपको फ्लैशी होने की जरूरत नहीं, आपको फास्टेस्ट होने की भी जरूरत नहीं, लेकिन आपको पेशेंट और ऑब्जर्वेंट जरूर होना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे बड़ा कैपिटल पैसा नहीं, क्लैरिटी होती है। उन्होंने मार्केट को समझा, कंज्यूमर को समझा और सबसे इम्पोर्टेंट खुद को समझा। अगर आप एक नए एंटरप्रेन्योर हो तो शायद ये मैसेज आपके लिए है। स्टार्ट स्मॉल बट थिंक लॉन्ग टर्म। फॉलो ट्रेंड्स नहीं, अंडरस्टैंडिंग फॉलो करो और ग्रोथ के पीछे भागने से पहले ट्रस्ट को बिल्ड करो। फेलियर्स आएंगे, कंफ्यूजन होगा, कंपैरिजन भी होगा, लेकिन याद रखना हर सक्सेसफुल ब्रांड कभी अननोन ही था और शायद आज आप भी उसी अननोन फेज में हो जहां पेशेंस सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सो टेक योर टाइम, ऑब्जर्व मोर, पैनिक लेस। और कंसिस्टेंसी को बोरिंग समझने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बोरिंग कंसिस्टेंसी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट बनाती है। इसी के साथ ये था आज का एपिसोड बिजनेस अनप्लग्ड। मैं हूँ गीत और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जहाँ सक्सेस सिर्फ दिखाई नहीं देगी बल्कि समझ भी आएगी। टिल देन, ड्रीम बिग, स्टे ग्राउंडेड एंड कीप बिल्डिंग एंड कीप लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।
1: ईश्वर, हम माफी मांगते हैं कि हमने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को इग्नोर किया और हमेशा आपसे ज्यादा और ज्यादा की आस करते रहे। वी आर सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो है मनु दास का पे आवाज फिर भी मैं जोड़ के हाथ जो भी है पास है उस पे नाज बस कहना है थैंक्स लॉट।

इंडिया का सबसे हॉन्टेड फॉल, जहां सूरज डूबते ही रहना मना है। पर एक सवाल, क्या भानगढ़ सच में भूतों का घर है, या फिर हम सच से ज्यादा डर से डरते हैं? 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ, और शो लेकर आ गई हूँ कल्चर कारवा। और आज के सफर में हम जा रहे हैं भानगढ़ फॉल। वो कहा है कि कुछ जगहें डराती नहीं, बस सच बोलती है, और सच हमेशा आसान नहीं होता। भानगढ़, आखिर कहाँ है ये फोर्ट और क्यों फेमस है? भानगढ़ फोर्ट राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, अरावली की पहाड़ियों के बीच। कहा जाता है ये फोर्ट 17th सेंचुरी में बना राजा माधो सिंह के द्वारा, जो कि अंबर के महाराजा मान सिंह के भाई थे। कहा जाता है कि एक समय पर भानगढ़ हस्ता खेलता शहर था। यहाँ मंदिर, बाजार, महल सब कुछ हुआ करता था, पर जो शहर कभी शोर से भरा था, आज वो सिर्फ खामोशी से भरा है।

अगर इस फोर्ट की बात की जाए तो भानगढ़ का एक प्लानिंग लिंक मिलता है। भानगढ़ को टाउन प्लानिंग रूल्स के हिसाब से बनाया गया था। मंदिरों की ऊंचाई, घर की दिशा और महल की पोजीशन, सबका एक नियम था। कहा जाता है कि एक शर्त थी, राजमहल की छाया शहर पर नहीं गिरनी चाहिए। और बस यहीं से शुरू होती है असली कहानी। भानगढ़ फोर्ट की पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

पहानगढ़ फोर्ट की कहानी घूमती है तांत्रिक और राजकुमारी के बीच। आखिर क्या था ये कनेक्शन? 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा। कल्चर कारवा का आज का सफर हमें ले आया है पहानगढ़। कहा जाता है लोक कथाओं के मुताबिक भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपनी खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर थी। तभी एक तांत्रिक सिंघिया उस पर मोहित हो गया। बस फिर क्या था, तांत्रिक ने तेल में जादू मिलाया ताकि राजकुमारी उसके वश में आ जाए। पर राजकुमारी ने पहचान लिया और तेल का पात्र पत्थर पर फेंक दिया और तभी ये पत्थर जाकर तांत्रिक पर गिरा और तांत्रिक ने मरते मरते भानगढ़ को एक श्राप दे दिया। वो कहा है कि मोहब्बत जब जबरदस्ती बन जाए तो बर्बादी बन जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भानगढ़ की शराब की ये सिर्फ पहली कहानी है। एक और कहानी मिलती है जहां कहा जाता है कि भानगढ़ को साधु का श्राप भी मिला। ये कहानी बताती है कि एक तपस्वी साधु वहां रहता था। जब महल की ऊंचाई बढ़ी और छाया शहर पर पड़ने लगी, साधु ने श्राप दिया, ये नगर उजड़ जाएगा। लेकिन क्या वाकई श्राप से भानगढ़ उजड़ गया? आखिर हिस्ट्री क्या कहती है, ये जानने के लिए बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं, जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि पूरा इतिहास है। 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा। भानगढ़ के उजड़ने की कहानी सिर्फ शराब पर नहीं बल्कि हिस्ट्री पर भी आधारित है। आखिर हिस्ट्री क्या कहती है? अब आते हैं सच पर।

प्रेशर ने लोगों को वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। पर सवाल आज भी वही है, क्या भूत आई थी या जिंदगी चली गई? और बस इसी कहानी की वजह से आज भी एएसआई और एंट्री बैन का सच लोग पता लगा रहे हैं। भानगढ़ फोर्ट में आज भी एएसआई ने शाम के बाद एंट्री मना की है, पर रीजन पैरानॉर्मल नहीं, सेफ्टी है। कहा जाता है अंधेरा, जंगली जानवर और ब्रोकन स्ट्रक्चर्स, इन सब से किसी को नुकसान ना हो, इसलिए भानगढ़ में रात को जाना सेफ नहीं और एंट्री बैन है। क्योंकि यहाँ ये रूल्स डर की वजह से नहीं बल्कि हादसे की वजह से है। लेकिन अभी भी सवाल वही है कि फिर डर क्यों लगता है? इस रात से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

शहर, टूटे घर और खामोशी। इंसान का दिमाग खामोशी को कहानी बना देता है। 89.6 पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा। वो कहा है कि डर अक्सर साए से नहीं होता, डर होता है इस बात से कि सब कुछ खत्म हो सकता है। भानगढ़ फोर्ट की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि आज के समय भानगढ़ एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। दिन में यहाँ हिस्ट्री की क्लासरूम है और रात को कहानियों का जंगल। बात तो सही कही गई है कि भानगढ़ हॉन्टेड हो या नहीं, पर इसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। वो कहा है कि कुछ शहर सिर्फ साए से नहीं मरते, कुछ शहर बस यादों से जिए जाते हैं। तो ये था भानगढ़ फोर्ट, डर का किस्सा या इतिहास का सबक। कल्चर कारवा का आज का सफर आखिर हमें ले ही आया भानगढ़ की तरफ, जहां हमने जाना इतिहास और किस्से कहानियों का सच। अब फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए सफर के साथ, एक नए जायके के साथ। तब तक के लिए मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

एड शीरन की आवाज में गाना सिमेट्री, और सिमेट्री तो नहीं बन रही कहीं से भी, किस चीज की नहीं बन रही। कल शाम को देखा आप लोगों ने, लाइक यहाँ पर तो बारिश नहीं हुई जहाँ पर मेरा ऑफिस है, और बारिश हुई थी बल्लभगढ़ साइड बहुत ज्यादा, इवन पिछला साइड भी बहुत ज्यादा बारिश हुई है, बट बल्लभगढ़ से जैसे जैसे आप NIT की तरफ बढ़ते हैं तो बारिश धीरे होती गई, और कहीं कहीं पर तो हुई भी नहीं। सेक्टर 21, 46, फिर उसके बाद बदरपुर की तरफ चले जाओ तो वहां तो बूंदों का नामो निशान नहीं था। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। देखो मौसम ऐसा है ना कि गर्मी भी लग रही है, ठीक ठाक है, तबीयत भी खराब हो रही है। तबीयत किसकी खराब हो रही, मेरी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। खैर मैं आप लोगों को बता दूँ, देखो अभी ना लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, एक तो है SIR से, SIR के फॉर्म सबने तो सबमिट करे नहीं है, तो उसके ऊपर एक खुशखबरी है वो भी बताऊँगा, और इसी के साथ साथ एक और चीज़ जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ वो ये है E20 क्या है, ये E20 पेट्रोल, इसके ऊपर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, बट लोग अभी परेशान है, लोग कह रहे हैं कि क्या हमारी गाड़ी में E20 पेट्रोल डलवाना सही है या फिर नहीं। करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में बात, और साथ ही साथ मौसम विभाग का भी कुछ कहना है, क्या है मौसम विभाग का कहना वो भी कर लेंगे बात। एंड मैं एक चीज़ से नाराज़ हूँ, सभी फरीदाबाद वालों से, इवन अपने आप से भी नाराज़ हूँ कि फरीदाबाद में कचरा बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, और गुरुग्राम का जो लैंडफिल है वहाँ पर से भी शिकायतें आ रही है बहुत सारी, तो करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में बात। अब इसी बीच अगर आप लोगों को मुझसे कोई भी बात करनी है, ABC XYZ कुछ भी बात करनी है, करेंगे। आप लोग मुझसे कैसे बात कर सकते हो बता देता हूँ, नंबर है जी मेरा 9654896896, इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हो आप लोग। और हाँ एक और चीज़ आपको बता दूँ, कल मैच देखा इंडिया वर्सेज इंग्लैंड, जब मैं यहाँ से निकला ना उसके बाद ही वो मैच शुरू हुआ था, और कल तो कोई अपडेट दे नहीं पाया, तो आज उस पर बात करेंगे कि कैसी रही परफॉर्मेंस और अगला मैच कब होने वाला है, करेंगे इन सब चीजों के बारे में बात। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, KK की आवाज में, सुनिए इस गाने को 89.6 रेडियो महारानी पर।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

सुबह भी हंसी है, शाम भी हंसी है, न जाने दिन में क्या हो जा रहा है आसमान को, कि बादल थोड़े से आते हैं फिर चले जाते हैं और फिर उसके बाद गर्मी, वो भी उमस वाली गर्मी रह जाती है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। देखो बताना पड़ता है बार बार कि मैं आ गया हूं। अब मैं एक बात इसलिए बोलना चाह रहा हूं क्योंकि गर्मी दोपहर में बहुत ज़्यादा थी। ऑल्दो आज मैक्सिमम टेम्परेचर 37-38 डिग्री तक ही गया था, बट इट वॉज फीलिंग एज ए 45 डिग्री सेल्सियस। और ये टेम्परेचर सच में बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा था। अब मैं आपको बता दूँ एक और चीज़। देखो अब आने वाले कुछ दिन में क्या होने वाला है, आने वाले कुछ दिन में आप लोगों को बारिश देखने को मिलने वाली है। बट एक्साइटेड मत हो क्योंकि वीकेंड के बाद ही ये बारिश शुरू होगी। और आज तो हफ्ते का वो वाला दिन है ना जब हम लोग बैठ के सोचते हैं कि यार अभी 3 दिन या 2 दिन और ऑफिस आना है। फिर मन में खुशी भी होती है कि बस 2 ही दिन और ऑफिस आना है। तो देखो अभी मौसम की बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि तबीयत खराब हो रही है सबकी, मेरी भी, बहुत लोगों की और भी है जिनकी तबीयत खराब हो रही है। मेरे नोन में बहुत सारे लोग हैं जिनको वायरल फीवर हुआ है, बदन टूट रहा है, और इसी के साथ साथ बारिश जब हुई है तो बारिश ने पानी जमा किया है, पानी जमा हुआ है तो डेंगू के मच्छर बढ़ रहे हैं, डेंगू के केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो मैं आप सभी से सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और अगर हल्का सा भी बुखार या कुछ भी लगता है तो आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। खुद से दवाई मत खाइए। आप सोचते हो पैरासीटामोल खा लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने। तो आप लोग प्लीज़ अपनी तबीयत का ख्याल रखिए क्योंकि मौसम सच में बदल रहा है और ये मौसम सच में तबीयत भी खराब कर रहा है। बाहर निकल रहे हो तो गर्मी लग रही है, उमस वाली, पसीने आ रहे हैं, अंदर आ रहे हो, एसी में बैठ जा रहे हो तो फिर ऐसे तो सर्दी और गर्म हो जा रहा है, फिर तबीयत खराब तो होना लाजमी है। तो चलिए इन सब चीज़ों के बारे में और बात करेंगे, और मौसम विभाग ने क्या बोला है बारिश को लेकर करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद। एक और मिक्स मैशअप आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप।

0: सदा सुरक्षित रहो। रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन
1: रोडवेज वाले?
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात करते हो।
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: देश के कई हिस्सों में अनस्टॉपेबल हो रखी है इस टाइम बारिश, और कई हिस्सों में गर्मी अनस्टॉपेबल हो रही है, और हम लोग उसी हिस्से में रहते हैं जहां पर गर्मी अनस्टॉपेबल है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और एक बात बोलना चाहूंगा, और वो ये कि मौसम विभाग ने साफ साफ बोल दिया है कि अभी 20 तारीख तक कोई बारिश का आसार नहीं है। अब देखो, बारिश नहीं होगी तो फिर दिक्कत तो होगी ना मेरे दोस्त, और बारिश कुछ ऐसी चीज़ है जो कि मानसून हमें भर भर के देती है। बट इस बार फरीदाबाद में लास्ट वीक हुई थी, उसके बाद तो जो कल वाली बारिश थी उसमें बारिश नहीं बोलूँगा, क्योंकि किसी किसी जगह पर हुई बारिश और वो इतनी कम बारिश हुई थी ना कि उमस से ज़्यादा बढ़ा के चली गई। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मौसम विभाग का यही कहना है, बारिश अभी 20 तारीख तक कहीं पर भी नहीं होगी दिल्ली NCR में। बट हाँ, चांसेस ये भी हैं कि हो सकता है, मतलब बहुत कम चांसेस हैं कि आज से 3 दिन बाद यानी कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 18 तारीख को आपको हल्की फुल्की बरसात देखने को मिल सकती है। अब ये सब कुछ डिपेंडेड है, अब जो बोलो, सब कुछ निर्भर है एक ही इंसान पे। इंसान तो नहीं कहूँगा, देवता जरूर कहूँगा, इंद्रदेव की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर बारिश हो गई ना तो मैं सच में लड्डू चढ़ाऊँगा, कहाँ चढ़ाऊँगा वो देखते हैं। अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए। आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करूं, और वो रिक्वेस्ट ये है कि घर के आसपास कहीं पर भी पानी जमा हुआ आप देखते हैं तो हो सके तो उसको साफ़ करवाइए। अगर साफ़ नहीं करवा सकते तो उसमें मिट्टी का तेल ज़रूर डालिए। मिट्टी का तेल भी नहीं डाल सकते ना तो पेट्रोल डाल दीजिए थोड़ा सा, आई नो महंगा है बट स्टिल डाल सकते हो, क्योंकि डेंगू और मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो यही कुछ ऑप्शन है जो कि आपको अप्लाई करने अपनी लाइफ में, और अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते चाहिए। आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, और वापस आकर बात करते हैं SIR के फॉर्म के बारे में, क्योंकि SIR के ऊपर बहुत सारी बातें चल रही थी और बोला जा रहा था कि 14 तारीख लास्ट डेट है, बट अभी डेज बढ़ा दिए गए हैं, कितने डेज बढ़ाए हैं सब कुछ करूँगा उसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए गाना, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।
1: Sorry.

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

5:49 मेरी स्टूडियो क्लॉक में। और पता क्या, वक्त ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपको वक्त बता रहा हूँ कि 5:49 हो रहे हैं और आज है 15 तारीख, यानी कि 15 जुलाई। 14 तारीख लास्ट डेट थी किस चीज की, SIR का फॉर्म डिपॉजिट करने की। क्या हम लोग कर पाए, क्या फरीदाबाद आगे आ पाया? मैं बोलूंगा कुछ हद तक आ पाए, बट इसी बीच एक और इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। देखो शाम हो रखी और मैं बात टाइम की इसलिए कर रहा हूं ना, क्योंकि देखो टाइम निकलता जा रहा है और टाइम हमारा निकल चुका है SIR के फॉर्म सबमिट करने का। बट यहां पर एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि SIR का फॉर्म सबमिट करने के लिए अब 10 दिन की मोहलत और दे दी गई है, यानी कि 10 डेज आर एक्सटेंडेड, यानी कि अब 24 जुलाई तक आप लोगों को अपने SIR के फॉर्म जमा करवाने हैं अपने BLO के पास। अब देखो अगर आपके पास अभी तक आपके SIR के फॉर्म नहीं आए हैं तो खुद से जाके कलेक्ट कीजिए और उनको फिल कीजिए। देखो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आप एक बार लेकर आएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरह से उस फॉर्म को फिल करना है। बट अगर आपको फिर भी पता नहीं चलता तो देखो हम सब टैक्स सेवी हैं, अपना फ़ोन उठाना है हम लोगों को और उसकी फ़ोटो क्लिक करनी है एंड उसके बाद आप लोगों को जेमिनी या फिर ChatGPT से पूछ लेना है। बट इसी के साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप वैसे ही पूछोगे ना कि SIR का फॉर्म कैसे भरना है तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी और इवन आप अपने BLO से भी कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखो SIR का काम जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए ताकि हमारा फरीदाबाद भी आगे निकल सके। और अगर आपने SIR का फॉर्म अभी तक कलेक्ट नहीं किया तो आप लोग ऑनलाइन भी जाकर इसे फिल कर सकते हैं। अब देखो SIR इज नॉट ओनली फॉर वोटिंग राइट्स। अगर आपको लग रहा है कि आपका सिर्फ वोट का अधिकार मिलेगा आपको, नहीं ऐसा नहीं है। उसके अलावा सिटीजनशिप के लिए भी है ये और गवर्नमेंट स्कीम्स भी इसके थ्रू आप लोग अवेल कर सकते हो। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ जाकर अपना SIR का फॉर्म सबमिट कीजिए। अगर कलेक्ट नहीं किया तो आज ही कलेक्ट कीजिए और रेडियो महारानी सुनते जाइए। पूरे रेडियो महारानी की टीम की तरफ से और साथ ही साथ सीदास ग्रुप की तरफ से आपके लिए ये संदेश था छोटा सा। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, बहुत ही प्यारा सा, सुनिए इस गाने को। मैं हूँ द मोस्ट वॉन्टेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: बकवास है।
1: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
2: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: हाँ तो अर्ज किया है.
5: ओहो, अर्ज होता है अर्ज.
4: कर रहे हैं आप, सुनो तो.
5: इरशाद,
4: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया.
5: तुम्हारे नंबर पे?
4: हाँ जी.
5: अच्छा,
4: और उन्होंने पूछा क्या?
5: क्या पूछा?
4: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया.
5: क्या बात कर रहे हो?
4: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है.
5: अच्छा,
4: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है.
5: बिल्कुल तुम्हारी तरह. ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है.
4: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे.
5: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है.
4: इज्जत का फालूदा कर दिया यार.
5: बाय.
4: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
5: बाय.
6: जिन मनुष्यों को दानों से बचा रहा है, कलयुग में वे स्वयं दानों से कहीं अधिक पापी हो जाएंगे. और एक दिन ऐसा आएगा जब उनके पाप धरती के सबसे बड़े दानव को जन्म देंगे, जिसके जानते ही संपूर्ण मानव जाति हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी.
7: मैं धूम्रपान का आदि हूँ, भोले को भांग चढ़ाता हूँ.

0: हूँ जो चाहे वो कर सकता हूँ, सब छोड़ के सारे बुरे कर्म लो मानवता पर चलता हूँ। क्यों इंतजार करे हम सब श्री कृष्ण के अवतार का, सब मिलकर हम निर्माण करें नव सतयुग से समाज का, जहाँ पशु को पूजा जाता हो और मांस कोई ना खाता हो, हर मानव में मानवता हो ना मानवता दिखावा हो।
1: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
2: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

क्या आपको मालूम है कि हम लोग पूरे फरीदाबाद वाले कितना टन कचरा डेली जनरेट करते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि हम लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हम तो ऐसा कुछ करते नहीं हैं, हम लोग कचरा कभी भी जनरेट नहीं करते, हम लोग तो अपने जो कूड़ा है वो कूड़ेदान में डालते हैं। बिल्कुल, वो जो कूड़ेदान में डाल रहे हैं ना वो भी कचरा जनरेट करना ही कहलाता है। और अगर मैं बात करूं फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में ही टोटल हर दिन 1200 टन के करीब कूड़ा निकलता है फरीदाबाद से। और अभी रिसेंटली सबको पता है, सबको मालूम है, और जिनको नहीं मालूम उनको बता देता हूं कि बंदवाड़ी का जो ये लैंडफिल है उसमें कूड़ा जाना बंद हुआ था। मगर फिर उसके बाद फरीदाबाद का कूड़ा कहाँ गया? प्रतापगढ़। और वहाँ पर अब 2 किलोमीटर दूर तक ये बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, जो कि एक लाजमी है, क्योंकि देखो कहीं कूड़ा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा ना, उसके आसपास दुर्गंध होती है। और फिर उसके बाद जब वो कूड़ा बढ़ता जाता है, जहाँ पर मैं 1200 टन की मैं बात कर रहा हूँ, जब वो इतना ज़्यादा हो जाता है तो फिर हर जगह बदबू आना लाजमी है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ सभी फरीदाबाद वालों से कि गीला और सूखा कचरा दोनों अलग अलग करके आप लोग अपने पास रखिए, और फिर उसके बाद वही चीज़ आप आगे भी प्रोवाइड कीजिए। मतलब आपके घर से जो कलेक्ट करने के लिए आते हैं तो उनको गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके कूड़ेदान में डाल के दे दीजिए। अब मैं यहाँ पर गीले कचरे की अगर बात करूँ, जैसे कि हमारा फूड का वेस्ट होता है, तो उनसे हम लोग कंपोस्ट बना सकते हैं बहुत इजीली। और जब आपके घर में रोटी बच जाती है तो वो रोटी तो आप लोग सबसे पहले गाय या फिर अपने स्ट्रे डॉग्स को दे सकते हैं, बट उसके अलावा आप लोग सारा गीला कचरा जितना भी है उसका इस्तेमाल आप लोग कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं। कैसे बनाना है कंपोस्ट, ये सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, बहुत सारी वीडियोस है, तो प्लीज इसके बारे में जरा सोचिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। ख्याल है इस गाने का नाम, तलविंदर की आवाज में। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: इरशाद,
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ। जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी की 9.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: Yo boys, I am singing song. Soup song.

Why this cola very D and why this scam G? मतलब क्यों स्कैम बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग सतर्क नहीं हो पा रहे, और मैं लगातार हर रोज ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन तो बोली देता हूँ कि प्लीज प्लीज प्लीज कभी भी कोई भी अननोन लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आपको पता है स्कैम किसके साथ होते हैं? जो इंसान डरता है। और दूसरे टाइप के स्कैम जैसे लिंक वाले स्कैम, ये किसके साथ होते हैं? ये उनके साथ होते हैं जो लोग टैक्स सेवी नहीं है, लाइक हमारे पेरेंट्स। हम लोगों के पेरेंट्स के पास कोई ना कोई लिंक आता है अगर, तो वो बाय चांस क्लिक भी कर सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और हम लोग जहां पर अपनी बात करें मिलेनियल्स एंड जेंजी, तो हम लोग इतने तो शाणे हो सकते हैं कि हाँ हम लोगों को पता है कि कौन से लिंक पर क्लिक करना और कौन से पर नहीं करना। बट आप लोगों को ना इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि अननोन नंबर से कभी भी आपको कोई भी लिंक आता तो उस पर क्लिक मत कीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जेंजी और मिलेनियल्स नहीं फंसते, वो भी फंसते हैं, बट आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा फंस सकते हैं। आप देखो काफ़ी बार ऐसा आता है कि आपके पास कॉल आए और बोले कि मैं अधिकारी बोल रहा हूँ, आपके साथ ये हुआ, आपके साथ वो हुआ, आपका बैंक अकाउंट में इतने पैसे आ गए हैं। तो जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक और बात मैं यहाँ पर बोलूँगा, काफ़ी बार ये जो स्कैमर्स होते हैं ना, ये सोशल इंजीनियरिंग का फ़ायदा उठाते हैं। लाइक उनको आपका एड्रेस पता होगा, उनको आपका नाम पता होगा, उनको आपके फादर का नाम पता होगा, उनको आपके कोई ना कोई हो सकता है दोस्त का नाम भी पता हो, तो वो आपके साथ ऐसे भी बात कर सकते हैं। एक सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाएंगे आपको, मतलब आपको बोलेंगे बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, प्लीज़ अभी जल्दी से फटाफट मुझे पैसे भेज दो। और आपको लगेगा आपका कोई दोस्त कॉल कर रहा है, आपको लगेगा आपका कोई बेस्ट फ्रेंड कॉल कर रहा है, या फिर कोई आपका कलीग है ऑफिस में, या फिर हो सकता है आपका कोई फैमिली मेम्बर आपको कॉल कर रहा है। और फिर उसके बाद आप हो सकता है पैसे भेज दोगे, मगर अगर आपने गलती से भी ऐसे पैसे भेज दिए तो आप पछताना पड़ सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि कोई भी आपके पास कॉल आता है, आपको हल्का सा भी डाउट होता है, तो उस कॉल को तुरंत कट कर दीजिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए। आप सभी के लिए गाने चला रहा हूँ, वापस अगर और भी ढेरों बातें होती रहेंगी, ओनली ऑन 89.6 FM रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

अगर आपके मैनेजर या फिर आपके बॉस आपको बोले कि देखो थोड़ा सा तो ओवर टाइम काम करना पड़ेगा, तो आपका रिप्लाई क्या होगा? आप ये तो बोलोगे ओके सर, आप बोलोगे ठीक है सर कर देंगे, बड़े मन पे हाथ रखना पड़ेगा, पत्थर रखना पड़ेगा दिल पे, फिर मन से आता है कि चलो यार कर देते हैं काम। बट क्या हो अगर मैं बोलूँ कि एक एम्प्लॉय ने ऐसा बोला कि देखो आपकी डेडलाइन गई भाड़ में, आप लोग अपना काम टाइम से कराया कीजिए, क्योंकि टाइम के बाद मैं तो काम करूँगी ही नहीं, और ऐसा एक वीडियो वायरल हो रहा है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। ये जो वीडियो है ना, ये काफ़ी अमेजिंग है और इस पर लोगों के मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं। एक्चुअली मैं एक लड़की के पास, उनके बॉस का फ़ोन आया, उनके बेसिकली मैनेजर का फ़ोन आया, तो मैनेजर ने ये बोला देखो ऐसा है आप फिर से काम कीजिए, 5 बच्चों के हैं, छुट्टी हो चुकी है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग काम नहीं करेंगे, देखो डेडलाइन बहुत ज़्यादा नज़दीक है, आपको काम करना पड़ेगा। और वहाँ पर ये लड़की कह रही है देखो ऐसा है 5 बजे तक की मुझे सैलरी मिलती है, उसके बाद मैं 1 मिनट का भी काम नहीं करूँगी, और अगर आप मुझे काम करवाना चाहते हैं तो फिर आपको मुझे पे करना पड़ेगा। अब जब ये बात आई तो मुझे तो ऐसा लगा कि हाँ शी इज़ राइट, बट फिर उसके बाद एक कमेंट मैंने पढ़ा जिसको पढ़ के मुझे ऐसा लगा ये कमेंट वाला भी सही है। अब कमेंट क्या था, कमेंट ये था कि जिस तरह से ये लड़की अपने मैनेजर से बात कर रही है, तो मैनेजर इज़ ऑल्सो एन एम्प्लॉय ब्रो,

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

एक शरीर है दो मनुष्य लगता मेरे भीतर रहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि सब कुंडली देख के कहते हैं, एक तो है सीधा बड़ा और दूसरा बहुत ही पापी है, मेरी हरकतों से बस पता चले कब कौन सा मुझ

मार्ग में ज्ञान संसार कना पर बुद्धि को एकांत करा। मैं पढ़ता गया मैंने बुद्धि में ब्रह्मांड भरा। मैं शून्य बना, मैं शांत बना, डिवोइस मैं देवांश बना। मैं लिखता गया अब कोई लगा।

ज्ञान संसार गना पर बुद्धि को एकांत करा। मैं पढ़ता गया मैंने बुद्धि में ब्रह्मांड भरा। मैं शून्य बना, मैं शांत बना, डिवोइस मैं देवांश बना। मैं लिखता गया अब कोई लगाम विचार पे ना।

जॉब ढूंढने जाते हैं ना, तो हम लोगों के मन में ये होता है कि बस हाँ यार जॉब लग जाए, उसके बाद हम लोग देख लेंगे काम कैसे करना है कैसे नहीं करना, हम लोग अच्छा अच्छा काम करेंगे ताकि हम लोगों की सैलरी आगे और बढ़ जाए, है कि नहीं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और जो मैं ये बात बोल रहा हूँ एक्चुअली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक लड़के की चैट वायरल हो रही है जहाँ पर वो HR टीम को व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा है। वो कह रहा है देखो मैं डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट राइटर के रोल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मुझे AI बहुत अच्छी तरह से चलाना आता है, मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है, एडवांस्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही अच्छा कैंडिडेट हूँ आपके इस पोस्ट के लिए, और कह रहा है मेरे को आपका रिस्पॉन्स भी चाहिए। मगर इसके बाद आती है उसकी डिमांडें, कह रहा है देखो ऐसा है मेरी सैलरी कम से कम 40,000 से 50,000 रुपये के बीच में होनी चाहिए और इससे कम में तो मैं आ नहीं पाऊँगा पहली बात, और दूसरी बात मुझे हर सैटरडे संडे छुट्टी चाहिए वो भी फिक्स्ड, और अगर हो सके तो आप लोग ना सिर्फ व्हाट्सएप पर ही कन्फर्म कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा मुझे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। ये तो थी डिमांड इस लड़के की जिसने जॉब के लिए अप्लाई किया है। ऐसे डिमांड कौन करता है, जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें हम्बल होना पड़ता है क्योंकि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआ प्यासे के पास नहीं आता है। तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है बताइएगा जरूर, नंबर है जी 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ उस लड़के की आवाज में जिसने बचपन में ही बहुत कुछ कमा लिया। हर्ष लिखारी की आवाज में सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे ग्लास तो पीती जा सुन।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक UI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

E20 फ्यूल को लेके सब लोग परेशान हो रखे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी की माइलेज गिर गई है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मगर उसी बीच एक इन्फ्लुएंसर आता है सामने जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, और उस इन्फ्लुएंसर का नाम है सौरभ जोशी। सौरभ जोशी के व्लॉग्स आई गेस सभी ने देखे होंगे, 90% लोगों ने तो देखे ही होंगे। तो सौरभ जोशी की वीडियो वायरल हो रही है जहां पर वो कह रहा है कि देखो, जब से मेरी गाड़ी मैंने ली है अच्छी चल रही थी, 16 किलोमीटर की माइलेज दे रही थी, मगर जैसे ही मैंने E20 फ्यूल डलवाना शुरू किया तो मेरी माइलेज घट के 5 KMPL हो गई है। अब यहां पर केओस शुरू हो गया और केओस मचना लाजमी था, क्योंकि देखो सभी लोग इस टाइम E20 से बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई किसी को कुछ नहीं पता कि सच में माइलेज गिर भी रही है या नहीं, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं उनके पास जो पेट्रोल कार है वो कह रहे हैं नहीं गिरी माइलेज, और वहीं पर कुछ और दोस्त हैं जिनके पास पेट्रोल कार है वो कह रहे हैं माइलेज गिरी है। तो अभी मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं लोगों के। मगर उसी बीच जब सौरभ जोशी की ये वीडियो वायरल हुई है तो उनके पास है गाड़ी मर्सिडीज, और मर्सिडीज ने खुद से क्लैरिफाई कर दिया। अब मर्सिडीज ने बोल दिया, देखो ऐसा है कि इनके पास जो गाड़ी है वो 2022 के बाद ली गई है, और हमारी सारी की सारी गाड़ियां E20 के कंप्लायंट है, मतलब E20 का फ्यूल आराम से झेल सकती है और हमारी गाड़ी पे E20 का कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो उसके बाद से लोग कमेंट करना शुरू कर चुके थे सौरभ जोशी की वीडियो पे। लोग कह रहे थे कि प्रोपेगेंडा फैला रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और उसके बाद सौरभ जोशी ने इस वीडियो के पार्ट को डिलीट कर दिया अपनी वीडियो में से, लाइक यूट्यूब वीडियो पे डाला था और वहां से डिलीट कर दिया इस पार्ट को। तो फिर उसके बाद से लोगों के बीच में और ज्यादा हल्ला मच चुका है कि देखो क्या ये सच में माइलेज कम हो रही है E20 की वजह से, या फिर ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, फेक प्रोपेगेंडा है। तो इस पर आप लोगों की क्या राय है वो मैं जरूर जानना चाहूंगा। नंबर है जी 9654896896। इसके अलावा रेडियो महारानी के इंस्टा हैंडल पर भी आके आप लोगों में मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना हस्ती रहे तू सुनिए। इस गाने को मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। हाँ,

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: बकवास है।
1: क्या आप लोगों को मालूम है कि इंडिया में ओपनली शौच करना इज एन ऑफेंस, और अगर आपने ऐसा किया तो चलान भी कट सकता है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड अभी मैं जो ये बात बोल रहा हूँ ना, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, और वो है असम का वीडियो। और ये वीडियो देख के ना पता नहीं क्यों अच्छा सा लगा। आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी बार रोड किनारे लोग खड़े होकर शौच करना शुरू कर देते हैं बिना देखे कि कोई देख भी रहा है या नहीं देख रहा। तो गंदगी फैलाने वालों पर नई कार्रवाई की है असम ने, और असम में जो भी लोग खुलेआम शौच करेगा यानी दोज हु विल अटेंड द नेचर्स कॉल ओपनली, उनकी फ़ोटो तो दिखेगी ही दिखेगी। कहाँ पर दिखेगी? बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगा दी गई है जहाँ पर अगर कोई भी इंसान वॉशरूम गया है सड़क किनारे तो उसकी पूरी की पूरी वीडियो हर जगह बड़ी स्क्रीन पर चलाई जाएगी। अब देखो ये इसलिए किया गया क्योंकि देखो पहले से ही जुर्माना था और जुर्माने का कोई असर पड़ नहीं रहा था, तो नगर निगम ने सोचा चलो ये तरीका अपनाते हैं और लोगों की ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर लो। मतलब उन्होंने ये बोला देखो आप लोग वीडियो रिकॉर्ड करो, आप लोग हमें भेज दो और फिर इसको बड़े स्क्रीन पर चलाया जाएगा। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, बट फिर वही बात है कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर जैसे ये वीडियो वायरल हुई तो लोगों में बहस छिड़ गई कि एक इंसान है, मान लेते हैं वो एक पेशेंट है किसी बीमारी का, और उसको बार बार लगातार वॉशरूम की अर्ज होती है, तो फिर वो क्या करेगा? कुछ भी कर लो पर सड़क को तो गंदा नहीं कर सकते ना, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को तो गंदा नहीं कर सकते। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, और इस पर सब लोगों की अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट राय होती है। और अगर वहाँ के नगर निगम की बात करी जाए तो उन लोगों का कहना है कि देखो ये प्राइवेसी का मामला नहीं है क्योंकि हम लोग चेहरा उतनी साफ तरीके से नहीं दिखा रहे, बट हाँ जो इंसान देखेगा उसको पता लग जाएगा कि हाँ ये मैं ही हूँ। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए। एंड व्हाट इफ ये अगर फरीदाबाद में हो गया तो क्या होगा, सोचो जरा इसके बारे में। तब तक सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर।

0: अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: ओ थैंक यू गॉड। गाने का नाम था, मगर मैं भी बोल रहा हूँ, और थैंक यू गॉड तो नहीं बोलूंगा, बट थैंक यू टीम इंडिया कि इस बार सर झुकने नहीं दिया। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। आपको पता है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चल रहा है मैच, और आज नहीं चल रहा, मतलब कल था ODI, और 3 ODI है टोटल। पहला इंडिया ने जीत लिया है 6 विकेट से, और कल का मैच देखने लायक था, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में इंग्लैंड धो रही थी, फिर उसके बाद ठीक है, उसके बाद इंडिया ने विकेट लेनी शुरू करी, मगर एक खिलाड़ी को फिर से आउट नहीं कर पाया, और उस खिलाड़ी का नाम है जो रूट। भाई ये लड़का बहुत अच्छा खेलता है। और वहीं पर अगर टीम इंडिया की बात करें बॉलिंग की, तो बॉलिंग में कहीं ना कहीं जलवा दिखाया अक्षर पटेल ने, पूरे ऑलमोस्ट 10 ओवर उन्होंने डाल ही दिए थे, और 62 रन खा के 4 विकेट उन्होंने हासिल की। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ टीम इंडिया की बैटिंग की, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत दुख हुआ विराट कोहली की विकेट देख के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा डिजर्व करता है अपनी 100 सेंचुरीज, और कहीं ना कहीं पहुंच भी जाएगा, बस कुछ मौके और देने की बात है। वैसे तो सिर्फ 2 ODI बचे हैं, अगर मान लो इन दोनों ODI में 200 आ गई तो फिर मजा तो ही आ जाएगा। और अगर मैं बात करूँ पूरी टीम इंडिया की, तो यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर की भी तारीफ करनी पड़ेगी, 52 रन्स नॉट आउट, और अक्षर पटेल की भी 57 रन्स नॉट आउट। दोनों ने बहुत ही अच्छी बैटिंग करी एक ऐसे टाइम पर जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल था। वहाँ पर शुभमन गिल की अगर बात करें कप्तान की, तो कप्तान साहब रिटायर्ड हर्ट हुए, 80 रन उन्होंने बना दिए, फिर उसके बाद हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स में पता नहीं उनके खिंचाव आ गया था, जिसकी वजह से उनको वहाँ से लीव लेना पड़ा, मतलब ग्राउंड से लीव लेना पड़ा, और फिर वो निकल गए वहाँ से। तो मैं तो बस ये बोलूँगा कि अगला जो मैच है उसमें सब कुछ ठीक रहे तो ही ज़्यादा अच्छा है। तो अगला मैच भी जल्दी से आने वाला है हम लोगों के सामने, और अगला मैच कल है, कल शाम को शुरू होगा ये मैच, और कल लेट नाइट तक आपको देखने को मिलेगा। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए एक वीकेंड वाला गाना ओनली ऑन 89.6 FM, कुछ हटके।
1: थोड़ी विस्की, थोड़ी आइस, थोड़ी मुझ में बैड वाइब्स, थोड़ी बातें तेरी टॉक्सिक सी, थोड़ी थोड़ी सैड लाइफ, ये थोड़ी विस्की।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: मैं लड़की थी
4: आशा, इस पंजाब

0: पहुंचा।
1: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है,
2: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
3: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

एक सवाल मैं पूछूंगा आप लोगों से, और ये सवाल मैं पहले भी बहुत बार पूछ चुका हूँ, मगर अभी जो पूछना चाहता हूँ वो इसलिए क्योंकि हम लोग कभी ना कभी कोई ना कोई ये वाली गलती कर ही देते हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एक्चुअली मैं, हम लोग काफ़ी बार ऐसा कर देते कि हमने कुछ खाया हमने गाड़ी में और हमने रैपर बाहर फेंक दिया, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ खाते हैं पीते हैं बॉटल बाहर फेंक देते हैं, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोगों की जेब में अगर कुछ पड़ा होता है, टॉफ़ी मान लेते हैं, हमने टॉफ़ी खाई रैपर रोड में फेंक दिया। तो अगर इन तीनों का जवाब ना है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बट अगर इन तीनों में से एक का भी जवाब हाँ है तो समझ लो हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, हमारे अंदर सिविक सेंस की कमी है। तो मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कचरा बढ़ता जा रहा है फरीदाबाद में हर जगह, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और अभी फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगा आप सभी से कल शाम फिर से 5 से 8, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और रेडियो महारानी 89.6 FM सुनते जाइए, क्योंकि वापस आएगी गीत वैदेश बाजिया, प्यार भरी बातें प्यार भरे गाने लेकर। और यू नो ना कि गीत की आवाज़ तो बहुत अच्छी है ही, मगर उसके गानों का सिलेक्शन और भी ज़्यादा अच्छा है। तो सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर, मेरा वाला सॉन्ग मतलब इक्का बादशाह डीनो जेम्स की आवाज में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दिस इज गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: गया।
1: इसी गाने के साथ स्वागत है, शो लेकर आ गई हूँ इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। आप जल्दी से आ जाइए मेरे साथ ताकि बहुत सारी बातें आप तक पहुँचा पाऊँ। और आज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ है फराज। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए ना? फराज के नगमे यहाँ पर मैं कुछ छेड़ने वाली हूँ, कुछ उनकी बातें जो वो कह गए, उनकी बातें दिल से निकली और लोगों के दिल तक सीधा पहुंच गई। ऐसी ही बातें मैं आपके दिल तक पहुंचाऊंगी। और फराज की बात हो रही है और उनकी वो बहुत ही खूबसूरत सी शायरी मैं आप तक ना पहुंचा पाऊं कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। और बहुत ही गहरी बात कह दी है फराज ने इस शायरी के थ्रू। वो कहना चाहते हैं कि अक्सर हम जिन अच्छे लोगों को सोचकर उनके पीछे भागते हैं और सोचते हैं कि यार ये इंसान बहुत खूबसूरत है, जैसा बाहर से दिखता है तो शायद अंदर से भी वैसा होगा। लेकिन यहाँ फराज कहना चाहते हैं कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। हो सकता है कि जो खजाने आप ढूंढना चाहते हैं, जो किसी इंसान की इंसानियत आप ढूंढना चाहते हैं, वो आपको खराबों में मिल जाए। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप ढूंढ किसे रहे हैं। फराज की बातें चल रही हैं और फिलहाल वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत। फराज के बारे में बातें चल रही हैं, उनकी खूबसूरत शायरी जो मुझे लगता है हम लोग आए दिन सुन ही लेते हैं, और आजकल तो इंस्टाग्राम पर शायरी का जो एल्गोरिथम आया है ना वो बहुत खास है। चलिए कम से कम हम वो पुरानी शायरियों से तो रूबरू हो रहे हैं। तो इसी बात पर ना मुझे फराज की एक बहुत ही खूबसूरत सी शायरी याद आई है कि जहां के शोर से घबरा गई क्या, तुम अपने घर को वापस आ गई क्या। यहाँ कुछ आशना सी बस्तियां थी, जंजीरों को समंदर खा गए क्या। ना थी इतनी कजा ताजा मुसाफत, पुराने हम सफर याद आ गए क्या। मेरी गर्दन में बाहें डाल दी हैं, तुम अपने आप से उकता गए क्या। यानी कि फराज इस शायरी में कहना चाहते हैं जो इंसानियत, शायद ये हमारे जितने भी शायर थे और जितने भी कवि थे ना, इनको पहले से ही पता था कि आगे क्या होने वाला है, और ये शायरी में यही कहना चाहते हैं कि इंसानियत कैसे गायब हो जाएगी इंसानों से, कि यहाँ कुछ आशना सी बस्तियां थी, जंजीरों को समंदर खा गए क्या। और ऐसी ही बातें जारी रहेंगी। शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत। अगला गाना है

गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्कबाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत, और फराज की बातें चल रही हैं। फराज की बातें चल रही हैं और फराज की वो शायरी मुझे याद आ रही है यहाँ पर, स्पेशली इस फिल्म के टाइटल को टच करती हुई वो शायरी है। जब कोई इंसान आपको बहुत टाइम बाद मिलता है ना, और वो

ऐसी सिचुएशन होती है जब आप उस इंसान को अपना नहीं पाते हैं, और अक्सर आपके दिल में ये बात रह रह कर आती है कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, क्योंकि तू बहुत देर से मिला है मुझे, तो मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का भी हौसला है मुझे, दिल धड़कता नहीं टपकता है, कल जो ख्वाहिश थी आबला है मुझे, हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। और फराज ने इस बात के थ्रू ना उन हजारों लोगों को एक कड़ा तंज कसा है जो बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि उनकी जिंदगी ना मेला है, बस उन्हें लोग ही लोग चाहिए। और यहाँ वो कहना चाहते हैं कि हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, उन्हें सिर्फ एक हम सफर चाहिए, पूरा एक मेला नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे, एक मुसाफिर जो है, एक जो इंसान है, वही मेरे लिए जिंदगी भर के लिए काफी है। तो फराज की खूबसूरत बातें चल रही है। फिलहाल वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है इश्क बाजियां।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: क्या आपको पता है कि फेसबुक पे आपके रिलेटिव से ज्यादा खतरनाक सिर्फ एक ही चीज है और वो है हैकर्स। तो उनसे प्रोटेक्शन चाहिए तो कुछ मेजर्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। तो सबसे पहले बात करते हैं पासवर्ड की। लेट मी गेस, आपका पासवर्ड क्या ही होगा? पासवर्ड 123 या फिर 12345? अरे भाई, तुम्हारा पासवर्ड इतना वीक है कि मेरी नानी भी गेस कर ले। तो सबसे पहले अपना पासवर्ड ऐसा बनाओ जैसे अपने क्रश को प्रपोजल लेटर लिख रहे हो, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और अनप्रिडिक्टेबल। याद रखो दोस्तों, सेफ रहो, स्मार्ट बनो और फेसबुक पे बॉस रहो।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत और बातें चल रही हैं फराज की। और फराज की एक शायरी अभी मैं पढ़ रही थी और मुझे ना इस शायरी से वो बात याद आई कि जब दो लोग साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे के लिए बदल जाते हैं, होता है ना अक्सर हमारी जिंदगी में ये बात, मुझे लगता है हर किसी के साथ हो ही जाती है, जब वो जमाने के लिए नहीं बदलते एक दूसरे के लिए बदल जाते हैं और एक दूसरे से नजरें मिलाते नहीं हैं, नजरें बचाते हैं। इसी बात पर लिखा है फराज ने कि दुख छुपाए हुए हैं हम दोनों, जख्म खाए हुए हैं हम दोनों, तू कभी चांदनी थी और धूप था मैं, अब तो साए हुए हैं हम दोनों, जैसे एक दूसरे से शर्मिंदा सर झुकाए हुए हैं हम दोनों, जैसे एक दूसरे की चाहत को अब भुलाए हुए हैं हम दोनों। इश्क कैसा कहां का अहद फराज, घर बसाए हुए हैं हम दोनों।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

विशाल मिश्रा की खूबसूरत आवाज में ये गाना है और देखिए गाने का टाइटल भी खूबसूरत है और फराज की जो ये अगली शायरी है ये भी खूबसूरत है क्योंकि इन्होंने खूबसूरत किसी शख्सियत के लिए लिखा है जिनसे शायद या तो ये प्यार करते थे या किसी के लिए भी इन्होंने लिखी है कि सुना है लोग उसे आंखें भर के देखते हैं सो कुछ दिन उसके शहर में ठहर के देखते हैं, सुना है रब्त है उसको खराब हालों से सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं, सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं, सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे उसे फलक से उतर के देखते हैं, सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को उसे जुगनू ठहर के देखते हैं, सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं सो हम बहार पे इल्जाम धर के देखते हैं, सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कुतर के देखते हैं, रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको जमाने ठहर के देखते हैं। सोचिए जब फराज ने इतना खूबसूरत लिख दिया है तो वो शख्स कितना खूबसूरत होगा। और फिलहाल वक्त है यहाँ पर ऐसे ही खूबसूरत से गाने का, गाना है अगला शोर इन द सिटी से साइबो गाना है और इसके बाद मैं रेट्रो इश्क लेकर आ रही हूँ, कहीं जाइएगा मत, इंतजार कीजिए और फिलहाल गाना सुनिए।

क्रिएट हुई ना वो बहुत अच्छी थी। तो इन्हीं यादों को आप तक पहुंचाती हूं रेट्रो इश्क के जरिए, और आज एक ऐसी ही लव स्टोरी लेकर आई हूं कि जिन्हें प्यार हुआ, इकरार हुआ और मंजिल भी नहीं मिली। ये बहुत ही खास सी लव स्टोरी है जिससे आज आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन अभी वक्त गाने का है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

आरडी बर्मन साहब का म्यूजिक, लता जी और किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। देखिए, जब किसी की याद आती है और ये पुराने गाने जब हम सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो इतनी सारी यादें इकट्ठी हो जाती हैं, इतने सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे होते हैं। और ये क्या जमाना था ना, जहां प्यार इशारों में हुआ करता। अगर किसी से इश्क हो तो वो आंखों से ही पता चल जाता, अगर किसी से कोई बात कहनी हो तो वो इशारों में ही हो जाती। और हाँ, जहां किसी को दिल की बात कहने में, इजहार इश्क करने में बहुत वक्त लगता, पहले उसे समझा जाता, फिर खतों के जरिए उस तक अपनी बात पहुंचाई जाती, और फिर ये भी देखा जाता कि हाँ, क्या उसे भी उतना ही इश्क है। क्या खूबसूरत सा जमाना था ना ये, जहां किशोरदा की, रफी साहब के, लता जी की आवाज में बहुत खूबसूरत से गाने होते और किसी को ये गाने डेडिकेट भी किए जाते। उसी रेट्रो वाले जमाने की, उसी रेट्रो इश्क की बातें होंगी यहाँ पर। अभी वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां। मैं हूँ इश्क वाली।

अनसुनी कहानियाँ मिलती हैं गलियों से, कुछ जज्बात भरी अनोखी निकलती हैं दिल से। फरीदाबाद की गलियों में सिर्फ रास्ते नहीं कहानियाँ भी बसी हैं। कहीं एक पुरानी हवेली अपनी कहानी सुनाने को बेकरार है। तो कहीं एक नया स्टार्टअप का सपना पंख फैला रहा है। हर मोड़ पर एक नई कहानी लिखी जा रही है और हम लेकर आए हैं वही कहानियाँ जो इन गलियों से निकलती हैं और सीधा आपके दिल तक पहुँचती हैं। तो सुनिए फरीदाबाद की गलियों से सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: शुरू हो जाओ।
1: तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद इरशाद।
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं पसीना भिगा देता है।
0: अरे रे,
1: अरे पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: मारी हरकतें जानता होगा।
1: अबे पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोया हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: आप तो बोलता रहे भाई।

कुछ वादे सच्चे होते हैं, लेकिन ये वादे ताउम्र निभाए जाएं ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसे मंजूर नहीं होती हैं, और ये रिश्ते, ये जो मोहब्बत होती है, ये अक्सर अधूरी रह जाती है। गाना है फिल्म हम किसी से कम नहीं, और गाना है पूर्णिमा और रफी साहब की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क में आज बातें होने वाली है एक उस जमाने की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। और जैसे कहते भी हैं कि जो सच्ची मोहब्बत होती है वो अक्सर अधूरी रह जाती है, और ये अधूरी मोहब्बत थी राज कपूर साहब और नरगिस की। वैसे दोनों की रियल लाइफ में तो बहुत ही अच्छी जोड़ी थी, बहुत ही सुपर हिट जोड़ी थी। इवन लोगों को ये जोड़ी इतनी ज्यादा पसंद आई कि लोगों ने बैक टू बैक फरमाइशें की इस जोड़ी को ऑन स्क्रीन देखने की। असल जिंदगी में भी उतनी ही जोड़ी ये एक दूसरे के लिए परफेक्ट थी। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों कभी साथ नहीं रह पाए। इनकी स्टोरी भी ना बिल्कुल फिल्मी स्टोरी जैसी है। इस स्टोरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली की।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून। ब्रेकिंग न्यूज, मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी अपने चरम सीमा पर है। धूप इतनी तेज कि आम का अचार बिना धूप में रखे ही बन रहा है और सड़क इतनी गर्म कि चप्पल भी इमरजेंसी मैसेज भेज रही है। पर सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? वो जो बोल नहीं सकते, सिर्फ उम्मीद से देख सकते हैं।
1: लेकिन टेंशन लेने का नहीं, सॉल्यूशन देने का टाइम है। एक बोल पानी रखो और किसी की प्यास का कूलिंग सिस्टम बन जाओ, क्योंकि एसी तो घर के अंदर है पर इंसानियत हर जगह होनी चाहिए।
0: रेडियो महारानी 89.6 FM कहता है, गर्मी से लड़े या ना लड़े, लेकिन प्यास से लड़ने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं और इंसानियत का फर्ज निभाएं।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां। मैं हूं इश्क वाली गीत और सेगमेंट है रेट्रो इश्क। बातें चल रही हैं राज कपूर साहब और नरगिस की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। एक ऐसा इश्क जो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उस इश्क में एक अलग सी बात थी। ये इश्क बेपनाह था। वैसे हिंदी सिनेमा में कई प्रेम कहानियां बहुत फेमस हुई जिनके आज भी चर्चे होते हैं। उन्हीं में से ये जोड़ी थी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त की। इनकी दास्तान बहुत ही खूबसूरत है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर भी प्यार से ये दिल भला क्यों डरा। ये गाना दोनों पर एकदम फिट बैठता है। दोनों के बीच बेपनाह प्यार था, फिर भी ये दास्तान कभी पूरी नहीं हो पाई। राज कपूर और नरगिस की सुपरहिट जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी। रियल लाइफ में भी दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, पर किस्मत को दोनों का साथ मंजूर नहीं था। और इन दोनों की केमिस्ट्री तो वैसे फिल्मों में गानों में भी दिखाई देती थी। और जब इनकी पहली मुलाकात हुई, उस वक्त नरगिस हिंदी सिनेमा में काफी अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी थी। इन दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा भी बहुत अलग है और बहुत ही खास है। दरअसल राज कपूर मिलने गए थे नरगिस की माँ से, लेकिन दरवाजे पर सबसे पहले इनकी नजर जब पड़ती है नरगिस पर, तो ये उन्हें देखते रह जाते हैं और अपना दिल हार जाते हैं। और इसे कहते हैं पहली नजर की मोहब्बत। जहाँ ये इस कदर अपना चैन खो देते हैं कि ये दोस्ती कर लेते हैं नरगिस के साथ, और ये दोस्ती जो है धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। तो इस तरह से इनकी पहली मुलाकात होती है। और इसके बाद दोनों ने काफी सारी फिल्में एक साथ की। बरसात के बारे में अगर बात करूं, 1949 में जो आई थी, उसके बाद प्यार, आवारा, आशियाना, पापी, श्री 420, चोरी चोरी, बहुत सारी फिल्मों में ये एक साथ नजर आए। और मैंने कहा ना, उस टाइम की बहुत डिमांडिंग जोड़ी थी ये। और आज इसी जोड़ी के बारे में बातें चल रही हैं। फिलहाल वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां। मैं हूँ इश्क वाली।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

गाना है फिल्म चुपके चुपके से और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है रेट्रो इश्क, जहां बातें चल रही हैं रेट्रो की बहुत ही फेमस जोड़ी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में। जहां नरगिस से पहली नजर का प्यार हो जाता है राज कपूर साहब को और वो उनके प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार हो जाते हैं। राज कपूर साहब उस वक्त शादीशुदा थे, इतना ही नहीं उनके बच्चे भी थे और ये बात नरगिस को भी पता होती है, लेकिन इसके बावजूद वो भी प्यार कर बैठती हैं राज कपूर से। और इसके बाद हर बार वो राज कपूर के साथ फिल्मों में आने लगती हैं और हर फिल्म उनकी हिट हो जाती है। और दोनों ऐसे ही बैक टू बैक बॉलीवुड को बहुत हिट फिल्में दे रहे थे। उस दौरान इन दोनों को बॉलीवुड के क्लासिक कपल भी कहा जाता। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है। और 9 साल के एक रिश्ते में रहे जहां नरगिस ने राज कपूर का इंतजार किया 9 साल। शादी भी करना चाहती थी लेकिन राज कपूर चाह कर भी उनके पास लौट कर ना आए। और इस तरह से ये जो मोहब्बत थी, ये इश्क की कहानी अधूरी रह गई। यहाँ बातें हुई राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में। और फिलहाल वक्त है गाने का। शो इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाए कुछ सरल उपाय।
1: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें। बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना,
3: और अगर सफर को खूबसूरत है बनाना तो गाड़ी नियंत्रित स्पीड पर ही चलाना।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके
4: 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं इश्क बाजू की दिल दिया गल्ला।

गाना बहुत खूबसूरत है और गाना है फिल्म ऐ दिल है मुश्किल से। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। आपके दिलों की बातें जो हैं वो आप तक पहुंचानी है और आज एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आई हूं दिल दियां गल्ला में। कहते हैं ना कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, और दोस्ती होती भी है तो धीरे धीरे वो दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। और बहुत सारे लोग ना इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार क्या होता है ऐसा कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती प्यार में बदल जाती है जबकि दोनों के बीच एक बहुत ही थिन लाइन होती है। लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी के साथ थोड़ा ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जब आपको उसकी हर बात से फर्क पड़ता है, चाहे दोस्ती क्यों ना हो, जब आप उससे अपने दिल की हर बात शेयर करते हैं और सेम सामने से भी वही फीलिंग है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अटैचमेंट्स के जरिए ये दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। इसी के बारे में बातें होंगी, शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, अगला गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से हमनवा।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
4: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
5: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
6: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना। रेडियो महारानी 89.6 एफएम सुन रहे हैं आप। शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है दिल दिया कल्ला। अभी मेरे पास एक मैसेज आया है, मैसेज है मेघा का और ये लिख रही है कि दोस्ती को प्यार में बदलने से कैसे रोका जा सकता है। हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना कि कुछ फीलिंग्स पर तो आपका कंट्रोल नहीं होता, वो हो जाती हैं और कई बार गो विद द फ्लो आपको भी हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं जरूर आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जनाब वो दोस्ती ही क्या जिसमें प्यार ना हो, ऐसा तो लोग कहते हैं, पर प्यार तो वो हसीन एहसास है ना जो हर रिश्ते में एक अलग सी बात ला देता है। और ऐसा भी लोग कहते हैं कि प्यार मर्जी से नहीं होता, ये हो जाता है। आप मानेंगे नहीं, कई बार अगर आप दिल से एक्सेप्ट कर लेना कि सामने वाले से आपको प्यार नहीं होगा तो यकीनन प्यार नहीं होगा। अगर आपने दिल से ही सोच लिया है कि आपके दिल में है कुछ उसके लिए, तो आप खुद को कैसे रोक पाएंगे। इसलिए अगर आप पहचानना चाहते हैं कि आपको किसी से प्यार है या नहीं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, आप ये देख सकते हैं कि आपको उसकी चिंता तो नहीं रहती। जैसे आप जब भी उसके बारे में सोचते हैं किसी बात को लेकर, तो आप परेशान हो जाते हैं, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम से आप परेशान होते हैं और आप हर बार कोशिश करते हैं कि वो इंसान अच्छा फील करे, आप उसे सही रास्ते पर ले जा पाए, या आपको किसी की याद आती रहती है। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो मुबारक हो मेरे दोस्त, आप प्यार में हैं। और अब अगर आप प्यार में हैं तो ये पक्का है, पर प्यार जो है वो बहुत से रिश्तों में हो सकता है, जैसे कि दोस्ती का रिश्ता। जैसे कि मेघा का सवाल आया है कि कैसे बचा जाए, तो दिक्कत प्यार में नहीं है, प्यार को समझने में है। अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे सिवा तुम्हें और कोई प्यार नहीं करता, तो सामने से ये रिप्लाई आता है कि आपको भी इसी तरह की सेम फीलिंग्स है। तो मेघा मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि दोस्ती में प्यार होता है, लेकिन दोस्ती में और प्यार में एक थिन लाइन होती है। दोस्ती में किसी की केयर होती है, किसी को आप समझते हैं, लेकिन हाँ जब इमोशंस का बहुत जुड़ाव हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप प्यार की तरफ खिंच जाते हैं। तो आप अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं वाकई में इस प्यार से बचना, और अगर बचना नहीं चाहते तो गो विद द फ्लो। फिलहाल वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

हूँ तेरे। गाना है फिल्म जन्नत 2 से और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजिया। मैं हूँ इश्क वाली गीत और सेगमेंट है दिल दिया गल्लां और प्यार के बारे में बातें चल रही हैं। ये जो प्यार होता है ना, कई बार बहुत अजीबो गरीब माहौल में हो जाता है। आप सोचते रह जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। एग्जाम्पल के लिए, किसी से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है और उससे आपको प्यार हो जाए, जहां एक दूसरे से आपने बहुत सारी बातें की हैं, रिश्तों पर एक दूसरे को बहुत सारी सलाहें दी हैं, एक दूसरे का मजाक बनाया है पुराने रिश्तों पर, लेकिन आपको एक टाइम बाद एहसास होता है कि आपको तो उसी से प्यार हो गया, बल्कि आपने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, आपके मन में तो कुछ ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ऐसा आपने सोच लिया। और आप फिर ये भी सोचते हैं कि सामने वाले के मन में अगर ऐसी कोई चीज ना हो, ऐसी कोई फीलिंग ना हो, तो खामखाई गलत फहमियां बढ़ेंगी और गलत कदम उठाकर आप उसकी दोस्ती को भी खो दोगे। इसीलिए आप शायद सोचते हैं कि आपको उसकी जिंदगी से अब दूर रहना है या उस इंसान से दूर चले जाना है। और इसमें होता ही है कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती कहीं खो जाती है, कहीं गायब हो जाती है। तो आपको खोना नहीं है और आपको ये भी जानना है कि सामने वाले को भी उतना ही इश्क है या नहीं है या क्या फीलिंग है, तो इसके बारे में बात करने वाली हूँ शो इश्क बाजिया। मैं हूँ इश्क वाली गीत और गाना है अरिजीत सिंह की आवाज में।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें, बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
4: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो। क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।
5: उनके

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ऑनलाइन दुनिया एक डिजिटल मेला है जहाँ हर चमक सोना नहीं होती, और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं खुद। एक दिन मुझे ऑनलाइन दिख गए कोरियन बूट्स सिर्फ 500 रुपए में, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। मैंने सोचा क्या कमाल की डील है, तभी तुरंत ही ऑर्डर कर दिया। और फिर जो हुआ, मेरे घर आए सिर्फ 500 रुपए का चूना। बूट्स तो कभी आए नहीं, बस मेरा दिल बोला अलेक्सा प्ले हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स, इसलिए OTP पासवर्ड बैंक डिटेल्स किसी को मत दीजिएगा। और कोई डील ज्यादा ही परफेक्ट लगे तो समझ जाओ स्कैम का जादू चल रहा है रमेश बाबू। अलर्ट रहिए, सेफ रहिए, वरना ऑनलाइन बाजार आपको भी कोरियन बूट्स का चूना लगा देगा।

गाना है फिल्म कभी हाँ कभी ना से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। और यहाँ पर बातें चल रही हैं कि जब किसी से दोस्ती हो और वो प्यार में बदल जाए, और आपको ये डर रहे कि सामने वाले को अगर ये बात पता चलेगी तो वो जो खूबसूरत सी दोस्ती है वो भी कहीं ना कहीं खो जाएगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको टाइम बहुत कम स्पेंड करना है। अब आप ये सोचेंगे कि गीत ऐसी बात क्यों कह रही है, बल्कि टाइम तो ज्यादा गुजारना चाहिए तभी तो आप समझ पाएंगे। लेकिन नहीं, आपको उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा सा समय अपने लिए बिताना है। ध्यान भटकाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। उनके लिए बहुत इजीली अवेलेबल ना रहे, उनके मैसेजेस का और कॉल्स का जवाब देने में थोड़ा सा टाइम लगाए यार, ताकि आपको भी तो पता चले कि उनको इंटरेस्ट है आप में या नहीं। तो आपकी जो गैर मौजूदगी है वो उन्हें आपकी याद दिलाने वाली है, और उन्हें लगेगा कि आपको ऐसा क्या हो गया कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इस बारे में सोचेंगे। और कहते हैं ना, जो चीज हमसे दूर जाने लगती है हमें तभी उसका ख्याल आता है, और हो सकता है कि आपकी गैर मौजूदगी उन्हें आपके ना होने का एहसास दिला दे, और उन्हें एहसास दिला दे कि शायद आपने उनमें

इंटरेस्ट नहीं लिया था, इसीलिए वो कहीं चले गए हैं, कहीं खो गए हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि उनको भी मोहब्बत है या नहीं, और यहाँ दोस्ती भी नहीं टूटेगी और आपको भी पता चल जाएगा। और देखिए इतनी सारी बातें हो गई हैं सेगमेंट दिल दिया गल्ला में, अभी मेरे जाने का है समय। मैं मिलूंगी आपसे कल जहाँ ढेर सारी बातें होंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: कबीर, ये हेलमेट दो।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप सुनो तो।
1: इरशाद,
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?

0: कोई हमसे।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ज्यादा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?

0: सीधा सादा है।
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा शादी का इरादा है।
1: क्या?
0: शादी का इरादा है।
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: शादी आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: मोना,
0: सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: आप मुस्कुराई पहले जरा आप मुस्कुराई
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।
2: कबीर ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

आशिक मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: कुमुराया मारे गिल कुमुराया उड़े तारा पड़छी उईटा बोले बटर सिरा कूड़े
1: कुमुराया मारे गिल कुमुराया उड़े तारा पड़छी उईटा बोले बटर सिरा कूड़े।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
0: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: ना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: डाल दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: बीजे सरकार
1: सानू थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो,
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
3: अच्छा अच्छा।

0: सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
0: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।
2: उनके जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, हंस के देखो ना लतीफा तुम्हें सुनाते हैं।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना सह तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: save life. पर सेव वॉटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझे मुझसे मिलाया है.

हर कोई याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारी किशोर दा को क्यों था पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हक के

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है 3 यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो।

0: कहती
1: कुड़ी मैनू कहती।
2: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
3: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
4: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: दूं, गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

का दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: मैं हूँ एम्बुलेंस। हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा।
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो

रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्मस्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: आज तक कभी किसी का मंगल नहीं हुआ है। यह आपके समस्त गुणों का नाश कर देता है।
1: सत्य है ना, जैसे सूर्य प्रकाशित हुआ तो अंधकार हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, ऐसे आप सत्य को धारण केवल कीजिए, फिर आप देखिए प्रकाश में हो जाए।
0: इसलिए क्रोध की संगति से दूर रहें। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल गुरु प्रेमानंद जी के विचार।
2: एक ही उपाय है, गुरुदेव की शरण। जैस हित हरिवंश विचारी के मनुज देह गुरु चरण गहे, सकहि तो सब परपंच तजी कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, विचार करके देख लो सार क्या है। जितना तुम कुछ जो भी कर रहे हो इसमें सार क्या है? यदि भजन नहीं हो रहा तो आप निशान, व्यर्थ है तुम्हारा जीवन। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान त्रिप्यामी। वो मरा हुआ डोल रहा है, मुर्दा है। आप कहोगे किसी जीवित को मुर्दा कैसे कह सकते हो? जो विषयों के अधीन है, भोगों के अधीन है, मलिनता को लिए हुए विचर रहा है, वो मरा हुआ ही तो है। जीवित तो तभी माना जाए जब वो निर्विषय हो जाए, सच्चिदानंद भगवान के रस में डूब जाए। तो कैसे इससे हम आगे बढ़े, माया प्रपंच से कैसे आगे बढ़े? हमारा मन तो बड़ा मलिन हो गया, और भजन साधन निर्मल मन से होता है। तो बोले गुरुदेव की शरण लो, विचार करो, कोई और उपाय नहीं। जैसी हरिवंश विचार कह मनुज देह गुरु चरण गए। ये मनुज देह की सार्थकता गुरु चरणों में क्या? बहुत दुर्लभ है सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होना। आप लोगों को अनुभव भी नहीं आ रहा, इसलिए कि आपके अंदर भूख नहीं है प्रियालाल की। अगर भूख होती ना तो फिर आपको जो स्वाद मिलता, फिर आप कह देते पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवाय। उपदेश दे देना, मंत्र दे देना कृपा का लक्षण है। आपके ऊपर कृपा है इसलिए मिल गई। लेकिन हाथ पकड़ के श्री जी के हाथ में दे देना बड़ा दुर्लभ विषय है। ये एक सदगुरु भगवान ही ऐसी कृपा करते हैं कि अपने जैसे अधमों को उपदेश, मंत्र, नाम और शासन और दुलार, इसके द्वारा हमारे मन को अधीन करके प्रियालाल के प्रेम में डुबो देते हैं। इस मल को केवल सदगुरु रूपी रीठा ही साफ कर सकता है, दूसरा नहीं। हरि आपको डांटेंगे नहीं, हरि तो बोल दिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुम करोगे भोगोगे। लेकिन सदगुरु ऐसा नहीं, करो तुम भोगेंगे हम, चिंता मत करो, ये बात कहीं नहीं मिलेगी। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। महाप्रभु हरिवंश गुरु है, गुरु हरिवंश क्या कह रहे? तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, ए शरणागत तू चिंता मत कर, चिंतन कर मेरी प्रियाजू का। अगर भूल चूक से अपराध बन जाएंगे मैं उसे भोगूंगा, तुम चलो श्री जी के पास। ये त्रिभुवन में ऐसा दयालु कोई नहीं गुरुदेव जैसा। वो हमारे क्षुद्र दोषों को ना देख करके अपनी कृपा से हमें वो महान रस देते हैं जो किसी साधना से नहीं मिलता है। अगर गुरु सानिध्य मिल गया है तो प्रमाद मत करना कभी, बहुत बढ़िया अवसर मिला है, निकल जाओ। आपको विशेष साधना नहीं करनी पड़ेगी। नौका में बैठे हो, हिलो डुलो मत, उसका बैलेंस मत बिगाड़ो। यद्यपि डूबेगी नहीं अविनाशी नौका है, पर तुम भयभीत हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। नाविक बड़ा खिलाड़ी है, उसको कोई परेशानी होने वाली नहीं। नाव सच्चिदानंद में ही वो डूबेगी नहीं, तुम परेशान हो जाओगे। नाव में बैठे बैठे तुम घबरा जाओगे, तुम भयभीत हो जाओगे, तुम अशांत हो जाओगे। अपने हृदय में एक बात ठान लो, देखो जीवन तो लोग तुच्छ चीजों में दे देते हैं। पता नहीं कैसा तुम्हारा व्यापार है, कैसा तुम्हारा बुद्धि का विचार है, एक साधारण संबंधों में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो आप। पति पुत्र परिवार नाना प्रकार के एक एक में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो। प्रियालाल की शरण में आने पे तुम्हें डर क्यों लग रहा है? वो तो निर्भय है, इनकी शरणागति का स्वरूप ही है निर्भय, निश्चिंत, निशोक और सनातन हमारे अंशी हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं। बहुतों को प्यार करके जीवन का जीवन दे दिया, एक बार इनका पाणिग्रहण स्वीकार करो। देखो आप लोग पाणिग्रहण स्वीकार करते हैं, कैसा भी हो जीवन निर्वाह करते हैं, इनके तो वेद यश गाते गाते थकते नहीं हैं। ये तो अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल है, इनके हाथ में हाथ देने में तुम्हें क्या परेशानी हो रही? चाहे जितना भटक लो अनंत जन्मों में, विश्राम तो यही मिलेगा के, काहे को लंबी यात्रा करोगे? इसी जन्म में विश्राम गृह में पहुंचो, श्री वृंदावन विश्राम। महाप्रभु कह रहे हैं विश्राम स्थल कहां है? श्री राधा जुग चरण निवास, प्यारी जू के गोरे चरणारविंद के समीप। जब हम